0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: तेरे घर वाले मान गए तो ठीक बात है, नहीं हुआ तो उठा लेंगे तुझे। ऐसी क्या बात है, मेरी बंदी है तू, देख ले समझ ले एक बात। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आप प्लीज़ मुझे जल्दी ऑफिस छोड़ दीजिए भाई साहब, मैं आपकी कैब में ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहती। क्योंकि आप अपनी बंदी को थ्रेटन कर रहे हो कि घर वाले नहीं माने ना तो जो ऐसे उठा के ले जाऊँगा। बट दिस इज़ वॉट इंडिया इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ वॉट रोमांस इन इंडिया इज़ ऑल अबाउट। अ वेरी हैप्पी मंडे टू यू। और अगर मेरी तरह इस मंडे की हसीन शाम को आपके भी ऐसे दर्शन हुए हैं द ग्रास लैंड्स ऑफ इंडिया के प्यार और रोमांस की लैंग्वेज से, देन व्हाई डोंट यू टेल मी ऑल अबाउट इट। या फिर अगर मेरे कैब ड्राइवर की तरह आपका भी लव लैंग्वेज कुछ ऐसा ही है कि मार देंगे उड़ा देंगे, देन आई थिंक यू एंड आई हैव अ लॉट इन कॉमन। बिकॉज डीप डाउन इनसाइड I might sound a little classy, but हूँ तो मैं भी bad gunda of India. So hit me up, let's have a convo about it. And while you do that, अगर ठीक से नहीं मैसेज किया ना उठा देंगे, और कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है या लाइन में आ रहा हूँ? तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mitchie Roshi.
1: Only on Radio Mitchie New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: घर में तो आप ये बोलकर जाते हो दैट आप बहुत स्टूडियस हो गए हो, इसीलिए कॉलेज की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, 100% अटेंडेंस. लेकिन द ट्रूथ इज दैट यू हैव द हॉट्स फॉर योर प्रोफेसर.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई कन्फेशन है देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी, कैसे हैं आप?
2: यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप इतने क्यूट साउंड करते हो ना, भोले से. और आपकी जो मैंने फोटोज देखी है इन योर इंस्टा प्रोफाइल, यू आर सो हॉट यार.
4: थैंक यू रोशी, मींस अ लॉट.
2: ओ क्यूटी पाई. अच्छा, आपने जो मुझे अपना कन्फेशन लेके भेजा था इंस्टाग्राम पर, उसे देखकर मैं काफी हैरान हुई थी. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, फुल डिस्क्लोजर, मैं थोड़ा सा हंसी भी थी. तो एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदाते रात को?
4: सो रोशी, आई वाज इन योर इंस्टाग्राम लाइव. तब वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपके मैसेजेस, आपके उस पे कमेंट कर रही थी. सो फिर हम दोनों की, मैंने सोचा कि चलो इनसे बात करता हूँ, बिकॉज उनकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी. हम धीरे धीरे बात करने लगे. फिर एक दिन शी टोल्ड मी कि चलो मिलते हैं सेम जगह. तो हम गए वहाँ, मिले एंड हमने डिनर किया. फिर मैंने सोचा कि उन्हें घर छोड़ देता हूँ. और रोशी, जब हम कार में बैठे तो मतलब आई एम लाइक दैट पर्सन कि यार अभी कुछ एकदम से स्टार्टिंग है रिलेशनशिप का, या मैंने तो अभी प्रपोज भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे किस कर दिया अचानक से. मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया. मैं डर गया कि मतलब यार ये क्या

0: और ऑकवर्ड हो गई, तो थोड़ा और पास आए और तो मैं तो रोशी डर गया, बिकॉज मैं ममाज बॉय हूँ, मैं अगर मम्मी को बता के भी आता हूँ कि यार मम्मी मैं डेट पे जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया, फिर मम्मी को क्या बोलूंगा ऐसा ऐसा कुछ हुआ, और मुझे शादी के बाद ही करनी थी ये चीजें, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, मतलब मुझे मना भी करना था, मैंने कहा यार रूठ भी नहीं हो सकता, बंदी भी अच्छी है, बहुत ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए।
1: मैं तो आपसे जानना भी नहीं चाहती हूँ कि अल्टीमेटली फिर सब कुछ हो गया कि अभी कुछ कुछ बाकी है, अब तो मैंने
0: रोशी उसके बाद मैंने फिर बहाना करा कि मम्मी की कॉल आ रही है, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में, तो मैंने कहा नहीं नहीं यहीं से साइड में पापा को उठाना है, तो आप प्लीज रिक्शा में चली जाओ।
1: भाई मैंने इनफ नमूनों से बात कर ली ऑलरेडी, लेकिन आप जैसा तो कोई भी नहीं है, मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ जिसमें आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिस्ट्री कॉलर।
0: प्लीज
2: यू've been roshified।
1: Oh God, it was amazing talking to you, Mystery Caller. अगर मेरे Mystery Caller की तरह आप भी निहायत ही शर्मीले किस्म के इंसान हो, then I think we should totally talk just for a lark. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. So hit me on Instagram या FB, but whatever you do, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.
3: एक

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: उसको पता ही नहीं इंतजार का दुख जॉन, मैं कभी उसके पास देर से गया ही नहीं। ये लाइंस ऑब्वियसली जॉन इलिया साहब ने लिखी थी और ये इतनी खूबसूरत है बिकॉज अक्सर क्या होता है, आई हैव रियलाइज्ड इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो प्यार की धूप में तप तप के आशिक बनते हैं और वो जिन्हें प्यार इतनी आसानी से मिल जाता है दैट दे प्रोबेबली डोंट रियलाइज द वर्थ ऑफ लव बिकॉज वो इतनी बिना शिद्दत बिना मेहनत के ऐसे ही मिल गया। एंड समटाइम्स क्योंकि प्यार आसानी से मिल जाता है वी एंड अप टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, जैसा मेरी जिंदगी में हुआ विद द लॉर्ड ऑफ मेन दैट आई लव्ड। क्योंकि मैं बिना किसी मेहनत के बस ऐसे खिंची चली गई प्यार में, सामने वाले इंसान को लगा कि हाँ इसको तो फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, ये कहाँ जाएगी। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू लीव। एंड एवरी सिंगल टाइम उस इंसान को कितना गम हुआ इस बात का कि अगर मैंने इसे समेट कर रखा होता तो शायद ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से ना निकला होता। अगर आप भी एक ऐसे इंसान है ना जिसने शायद ना चाहते हुए भी प्यार को फुली ना रियलाइज किया, ना रिकग्नाइज किया, ना उसे इम्पोर्टेंस दी और अब वो आपके साथ नहीं है एंड यू आर रियली मिसिंग दैट पर्सन एंड द रिलेशनशिप एंड द लव, व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर इंस्टा पर या FB पर, लेट्स गेट टॉकिंग। मैं आपके लिए शायद वो इंसान वापस तो नहीं ला पाऊंगी पर शायद वी कैन कनेक्ट ऑन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट लव ट्रूली इज। एंड टू डू दैट फाइंड मी ऑन द ग्राम, फाइंड मी ऑन FB एंड वट एवर यू डू, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: बचपन में स्कूल की वो कहावत याद है, इफ यू लव समवन देन लेट देम गो, इफ दे कम बैक दे आर योर्स, इफ दे डोंट दे नेवर वर, ये वो इफ दे कम बैक ना, इसका मतलब है कि किसी और को वो इंसान पसंद नहीं आया, आपका स्टैंडर्ड और चॉइस इतना गिरा हुआ है, भेज दो उस इंसान को अपनी जिंदगी से दूर, बिकॉज बिफोर यू नो इट यू विल बी कॉट इन अ रेड फ्लैग रिलेशनशिप जो महा टॉक्सिक है, और उसके बाद बातें करके भी हम उसका कोई इलाज खास कर नहीं सकेंगे। लेकिन अगर ये बातें सुनकर आपका मन तो बहुत करे कि रोसी हमारा जो बॉयफ्रेंड है ना, हमारा जीना इतना परेशान किया है कि हमारा मन करता है उसको उल्टा लटका दें हम पंखे से, उसे करने से पहले कन्या व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, फाइंड मी ऑन योर सोशल्स, एंड कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskaba na puskaba na sakaba na. Burga, burga, burga. Na vidva la burga. Mirci, burga.
1: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
1: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
1: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
1: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
1: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
1: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
1: बिल्कुल,
2: से,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
1: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
1: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
1: हूँ नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
1: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
1: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
1: भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: फोन मत करिए मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
1: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मुझे फर्स्ट एड पर जाना है और मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ बिकॉज ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू लूज थोड़ा सा वेट बिकॉज मैं अपनी परफेक्ट ड्रेस में फिट करना चाहती हूँ और उसमें ना मुझे आई थिंक 2-3 किलो और लूज करना पड़ेगा. बता दो ना रोशी ऐसे कैसे करें.
1: रोशी के DM से
0: ये मैसेज मुझे समृद्धि ने लिखकर भेजा. एंड सैम यू नो व्हाट बेब, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मुझे पता नहीं है कि व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ लूजिंग वेट एंड दैट टू लूजिंग वेट क्विकली. लेकिन आई कैन टेल यू दिस दैट एज अ पर्सन जो सारी जिंदगी डाइटिंग करता रहा है, द वन थिंग दैट हैज हेल्प मी लूज यू नो वो एक्स्ट्रा किलोज टू गेट इन टू माई परफेक्ट ड्रेस, मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ, ज़्यादा फाइबरस फूड्स खाती हूँ. ज़्यादा पानी पियोगे तो यू विल ऑब्वियसली लाइक लूज अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन यू गो टू द वॉशरूम, व्हिच इज ग्रेट फॉर लूजिंग वाटर रिटेंशन. हाई फाइबर खाना खाओगे यानी कि फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टीम्ड एंड बॉयल्ड वेजिटेबल्स, उससे आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और साथ ही साथ यू विल हैव मोर फाइबर, लेस फैट, एंड दैट विल हेल्प यू लूज अ लिटिल बिट ऑफ वेट. बट एवरीथिंग सेड एंड डन, वेदर आपकी फर्स्ट डेट हो ना हो, वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप या नहीं, आई ऑलवेज टेल एवरीबडी दैट एवरी डे कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज कर लो. इससे सिर्फ आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहती है, पता है समृद्धि, इससे आपका माइंड फंक्शन बहुत शार्प रहता है. ऑल द फील गुड हॉर्मोन्स लाइक डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब रिलीज होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो. सो डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, हैव अ लॉट ऑफ वाटर, हैव अ लॉट ऑफ हाई फाइबर फूड. And who knows, you'll fit into your dress like a dream. और एक बार आपकी dream date awesome जाए, whether or not you fit into your perfect dress, मुझे इसके बारे में बताना मत भूलना यार. I'm so excited that मैं अपने words ही भूल रही हूँ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जब मैं छोटी थी आई वॉज डायग्नोज विथ थायराइड और साइमल्टेनियसली मतलब मुझे काफ़ी सैडनेस भी लगती थी और क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि क्यों हो गया मुझे थायराइड ये वो, मैं अपने कमरे की खिड़कियां दरवाजे सारे टाइम बंद रखती थी और अगर थोड़ी बहुत सनलाइट आती थी ना तो मैं उसके आगे कर्टन ड्रॉ कर देती थी और माय मॉम यूज्ड टू गेट सो अपसेट, शी वाज लाइक नेचुरल लाइट नहीं है तेरे कमरे में और बीमार होती जा रही है इसकी वजह से, एंड आईड बी लाइक मॉम प्लीज़ ठीक है मुझे नहीं चाहिए लाइट वाइट, मुझे बंद कमरे बहुत अच्छे लगते हैं. Till I actually started reading about Vastu और मैं interested हुई astrology, tarot, Vastu में, and that's when I figured out, आपको पता है अगर आपके कमरे में ventilation proper है, आपकी हवा का आदान प्रदान ठीक से हो रहा है, खिड़कियाँ आप एक घंटे के लिए कम से कम अपने कमरे की या घर की खुली रखते हो और basically the ventilation and light in your room is as optimum as possible, तो जो भी sadness, depression या bad luck या फिर नेगेटिविटी है आपके घर में वो सब गायब हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि मेरा थायराइड ठीक हो गया, बट उसके साथ साथ जो मुझे सैडनेस होती थी ना बचपन में वो सब वेंटिलेशन एंड जेन्युइनली जस्ट लेटिंग द सनलाइट इन की वजह से बिल्कुल ठीक हो गई है. एंड दिस इज सच अ डूएबल वास्तु ट्रिक, आप अपनी जिंदगी में से ट्राई करके देख सकते हो एंड आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू दैट इसका सक्सेस रेट इज 100%. और एक बार यू फील इट एज वेल और आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हो ऑब्वियो, यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू हिट मी अप कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello, madam. Good evening.
1: Hi.
2: Bank se bolle ho na, hamari nahi ski bhaiye. मैडम ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गए ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा मैं।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: है। मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी।
1: प्यार
3: से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
1: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: घर में तो आप ये बोलकर जाते हो दैट आप बहुत स्टूडियस हो गए हो, इसीलिए कॉलेज की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, 100% अटेंडेंस. लेकिन द ट्रूथ इज दैट यू हैव द हॉट्स फॉर योर प्रोफेसर.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई कन्फेशन है देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी, कैसे हैं आप?
2: यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप इतने क्यूट साउंड करते हो ना भोले से, और आपकी जो मैंने फोटोज देखी है इन योर इंस्टा प्रोफाइल, यू आर सो हॉट यार.
4: थैंक यू रोशी, मींस अ लॉट.
2: क्यूटी पाई. अच्छा, आपने जो मुझे अपना कन्फेशन लेके भेजा था इंस्टाग्राम पर, उसे देखकर मैं काफी हैरान हुई थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग फुल डिस्क्लोजर में थोड़ा सा हंसी भी थी. तो एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदाते रात को?
4: सो अरुषी, आई वाज इन योर इंस्टाग्राम लाइव. तब वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपके मैसेजेस, आपके उस पे कमेंट कर रही थी. सो फिर हम दोनों की, मैंने सोचा कि चलो इनसे बात करता हूँ, बिकॉज उनकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी. हम धीरे धीरे बात करने लगे. फिर एक दिन शी टोल्ड मी कि चलो मिलते हैं सेम जगह. तो हम गए वहाँ, मिले एंड हमने डिनर किया. फिर मैंने सोचा कि उन्हें घर छोड़ देता हूँ. और रोशी, जब हम कार में बैठे तो मतलब आई एम लाइक दैट पर्सन कि यार अभी कुछ एकदम से स्टार्टिंग है रिलेशनशिप का, या मैंने तो अभी प्रपोज भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे किस कर दिया अचानक से. मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया. मैं डर गया कि मतलब यार ये क्या हो गया, कि करा उन्होंने स्टार्ट था बट ये गलत ना समझ जाए, ये क्या हो रहा है ऐसे. तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या करूं. देन रोशी थोड़ी सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई. थोड़ा और पास आया, और तो मैं तो रोशी डर.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: You know, हम सब जिंदगी में स्ट्रेस के फेजेस के थ्रू गुजरते हैं एंड स्पेशली हाईली इमोशनल पीपल लाइक माई सेल्फ. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं इस इमोशनल स्ट्रेस में बिखर ना जाऊं, टूट ना जाऊं. बट आई टेल माई सेल्फ थ्री थिंग्स और हर बार जब मैंने ये तीन चीज़ें अपने आप से कही हैं आई हैव इमर्ज स्ट्रॉन्गर ऑन दी अदर साइड. और वो तीन चीज़ें हैं विच आई लाइक टू शेयर विद यू. नंबर वन, एवरीथिंग इज़ ओके, आई विल मेक दिस वर्क. नंबर टू, मैं सेफ हूँ. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू इमोशनली या मेंटली फील वेरी थ्रेटन एंड फ्राइटन्ड एंड दैट कैन कम्प्लीटली ड्राउन यू. और नंबर तीन, इस टफ सिचुएशन में मैं पक्का कुछ सीख कर ही उभरूंगी. एंड एवरी सिंगल टाइम आई हैव बिकम अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. अगर आप भी जिंदगी में ऐसे किसी फेस के थ्रू गुजर रहे हो, यू आर फाइंडिंग लाइफ वेरी हार्ड टू डील विद, अपना नंबर भेजो ना, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई एम द गर्ल हु बिलीव्स इन लव. पता है क्यों? क्योंकि जिसके पास लव है

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: बॉलीवुड के लिए फ्राइडे होता है उनका जजमेंट डे। हर फ्राइडे बॉलीवुड को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक नया पोस्टर, एक नया ट्रेलर, एक नया गाना, एक नई कहानी। लेकिन हर साल सिर्फ कुछ ही चीजें वक्त की कसौटी पर टिकती हैं, बाकी सब कंटेंट बनकर रह जाती हैं। और मुझे पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है। हमारे पास आज सब कुछ ज्यादा है, we've got bigger budgets, we've got bigger marketing, we've got bigger platforms, और फिर भी क्या हम वैसे cultural moments create कर रहे हैं जो 10, 20, 25 साल बाद भी याद रह जाएंगे, या हम सिर्फ अगले फ्राइडे तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के काउंटडाउन में इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। म्यूजिक भी होगा, मेमोरीज भी होंगी, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब शायद बॉलीवुड को खुद ढूंढने पड़ेंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। एंड इस एपिसोड का पहला गाना है उस फिल्म से जिसे तारीफ तो मिल रही है पर बॉक्स ऑफिस की मोहर नहीं। मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली, एंड गाना नंबर 20 पर है इश्क मस्ताना, विच रियूनाइट्स मोहित चौहान विद एआर रहमान एंड इरशाद कामिल फॉर एन इम्तियाज अली फिल्म। ये तो हमने पहले भी देखा है।
4: नंबर 20

वेलकम टू द जंगल। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो एक बात समझ आ गई होगी, आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है। हर प्लेटफॉर्म आपको बुला रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, गेमिंग, सब आपके वक्त के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता था कि फिल्म्स अब और बेहतर हो जाएंगी और हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, कई बार लगता है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस हफ्ते लगान के 25 साल पूरे हो गए हैं और उसने मुझे एक बात याद दिला दी। 2001 सिर्फ एक अच्छा साल नहीं था, 2001 एक स्टेटमेंट था। लगान तो आई थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ आई एक और फिल्म।

एक फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी कहानियां ऑस्कर तक पहुंच सकती हैं। एक फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जमा की जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में जिंदा है। और एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को ग्लोबल फैमिली इवेंट बना दिया। सोचिए, तीन फिल्में, तीन अलग अलग फिल्म मेकर्स, तीन अलग अलग ऑडियंसेस और तीन अलग अलग विजन्स, और तीनों एक ही साल में आई। अब सवाल यह है, जब 2001 में ये मुमकिन था तो 2026 में हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा स्क्रीन्स है, ज्यादा मार्केटिंग है, ज्यादा डेटा है, लेकिन क्या हमारे पास उतनी ही कन्विक्शन है? क्योंकि क्लासिक्स बजट से नहीं बनते। क्लासिक्स तो बनते हैं जब फिल्म मेकर्स ट्रेंड फॉलो करना छोड़कर ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और शायद इसी भागदौड़ में कुछ फिल्में आती हैं और कुछ नोटिस हुए बिना निकल जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। उसका एक गाना मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू कर रहा है। इट्स अ फील गुड हैप्पी गो लकी सॉन्ग सॉन्ग बाय श्रेया घोषाल। गाना नंबर 18 है नब्ज नब्ज। नंबर 18।

0: हेलो।
1: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
2: हेलो।
0: हेलो,
2: कौन बोल रही हैं
0: आप? कौन बोल रही हैं?
2: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
0: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
2: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइव पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
0: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
2: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
0: ये तो वहाँ से मेरे पास,
2: अरे यार
0: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
2: हो सकता है, हो सकता है।
1: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
2: हेलो।
0: हेलो,
2: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ, तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, चाहे तो दो मिनट रुक के तू कर ले, तेरे कुछ जा रहा
0: है, दिमाग खराब
2: हो रहा है, बदतमीजी मत कर,
0: मुझे बात करने दे, पहले दो मिनट रुक
2: जा, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
1: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
0: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

सर्टिफाइड बैंगर बॉस, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और मुझे लगता है कि कॉकटेल 2 क्वाइटली इस साल की सबसे एक्साइटिंग साउंडट्रैक्स में से एक बन रही है। पहले आया जब तलक, देन यू हैव द सॉफ्ट तुझको, एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्लाह। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। नाउ हार्डी संधू इस गाने में गाते कम हैं, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन गाने और फिल्मों में एक फर्क होता है। एक फिल्म का साउंडट्रैक आप इंस्टिंक्ट से बना सकते हो, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट से जीतती है या फिर हारती है। और इसलिए मुझे शाहिद कपूर की कही एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शाहिद ने हाल ही में कहा कि अब वो स्क्रिप्ट्स सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर, अपने सिक्स सेंस पर डिसाइड नहीं कर रहे। नरेशन के वक्त तीन और लोग उनके साथ रूम में बैठे होते हैं, यानी कि तीन और ओपिनियंस, तीन और पर्सपेक्टिव्स। और शायद ही कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, और बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसल कर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना, व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब
4: मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने ही नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कद फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है। एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21, जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना ये है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है, स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है। वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। द कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स ए टिपिकल इटालियन सेटिंग और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स हैं, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स हैं, है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोक कर, हर नई एंट्री को देख कर, बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते नंबर 1।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें बाकी टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। Until the next time we meet, this is Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

रीमिक्स वाला ओरिजिनल गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जिस ओजी गाने की हम बात कर रहे हैं ना, इसके पता नहीं कितने रीमिक्स एंड रीमिक्सेस बने हैं। एक तो वेब सीरीज आई थी ना जिसमें भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर थे, रॉयल्स करके, उसमें भी ये गाना यूज हुआ था। लेकिन द मोस्ट प्रोमिनेंट रीमिक्स इस गाने का वॉज रिलीज इन 2002-2003, डीजे अकील का रीमिक्स। और ऑडियो से ज्यादा इसका वीडियो आपको शायद याद होगा 90s के बच्चों को खास करके, बिकॉज बहुत आफतें उठानी पड़ती थी इसका वीडियो देखने के लिए, घर वालों से छुप छुपा के देखना पड़ता था। याद है 90s 2000 में वो जो फोन हॉटलाइंस चलती थी जिसपे कॉल करके आप दोस्ती कर सकते थे, वो वाला थीम था इस वीडियो का। पिंक ड्रेस में तीन मॉडल्स होती हैं और फिर वो एक बोलती है अकेले हो दोस्ती करोगे, एंड देन दिस सॉन्ग प्लेज, जो ओरिजिनली है 1982 की फिल्म ये वादा रहा से। इसे कंपोज किया है आरडी बर्मन ने, लिखा है गुलशन बावरा ने, ब्यूटीफुली संग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग।
3: हाय,
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
4: पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गए ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
3: वही पैट मारूंगी ना।
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर बढ़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
4: मैडम, आपका तो मुर्गा बन गया।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं
5: से सॉरी
3: सॉरी ना मैं सॉरी।
5: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है
3: कुकड़ो को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
0: पुरानी जींस विद चारू ओनली ऑन।

0: फिल्म आपकी कसम में एक सीन था जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को एक थप्पड़ मारना था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म में सिचुएशन कुछ यूं रहती है ना कि राजेश खन्ना ऐसे शक्की हस्बैंड होते हैं जिनको डाउट हो जाता है कि उनकी वाइफ मुमताज का उनके फ्रेंड संजीव कुमार से अफेयर चल रहा है। तो ये सीन जहां पे राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था, उन्होंने काफी जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह ये थी कि किसी एक्ट्रेस ने ये रूमर फैलाया था कि संजीव कुमार और राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू का अफेयर था। तो ये तब की कोई खुन्नस, तब का कोई गुस्सा संजीव कुमार पे निकला। ऐसा शेयर किया था अंजू महेंद्रू ने एक पुराने इंटरव्यू में। बताइए पर्दे पर हम जो सीन्स देखते थे या देखते हैं उनके पीछे क्या क्या कहानियां छुपी होती हैं? पता नहीं सच भी होती है कि नहीं। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: सुनो कहा, सुना।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

कुछ कुछ पुराने गाने ऐसे हैं कि वो गाने तो चलो आइकॉनिक क्लासिक ब्रिलियंट हैं ही, लेकिन उनका जो म्यूजिक है ना, वो म्यूजिक चाहे वो बीच में कहीं आ रहा है अंतरे से पहले या एकदम वो म्यूजिक जिससे गाना स्टार्ट हो रहा है, वो अलग ही तरह का क्लासिक है। मतलब वो म्यूजिक उस गाने की पहचान बन जाता है। जैसे कि आने वाला गाना द ग्रेट गैम्बलर का दो लफ्जों की है दिल की कहानी, और अक्सर हम ना म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम जानते हैं कि ये गाना आरडी बर्मन ने कंपोज किया है, लेकिन उनके साथ पता नहीं कितने म्यूजिशियंस काम करते थे। कोई गिटार बजा रहा है, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई मैंडोलिन बजा रहा है। तो इस गाने में जो आइकॉनिक मैंडोलिन ट्यून है ना बिगनिंग की, ये मैंडोलिन प्ले किया था म्यूजिशियन अरविंद हल्दीपुर जी ने। और भी कई गानों में उन्होंने गिटार प्ले किया है, मैंडोलिन प्ले किया है, बट दिस वन स्टैंड्स आउट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

मासूम फिल्म का गाना ब्रिलियंटली संग बाय अनूप घोषाल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर अनूप घोषाल जी ने मेनली बंगाली गाने गाए हैं। हिंदी गाने उन्होंने बहुत लिमिटेड गाए हैं, लेकिन जो गाए हैं क्या गाए हैं, जैसे कि ये वाला। और मैं ना बड़ी हैरान हुई जब मुझे पता चला कि ये गाना उस साल 31st फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में नॉमिनेट ही नहीं हुआ था। मासूम फिल्म को वैसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, लेकिन ये गाना नॉमिनेटेड ही नहीं था। नॉमिनेशन में तीन गाने शब्बीर कुमार साहब के थे, आई थिंक बेताब फिल्म के, और दो गाने किशोर दा के थे। एक तो उनका सौतन फिल्म का शायद मेरी शादी का ख्याल, और दूसरा ये गाना जिसे एक्चुअली उस साल अवार्ड मिला था। सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

झूठा वादा करने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो वादा तोड़ने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग देलवी साहब का शेर है ये। अच्छा, पूनम अलाबादी शायर लिखते हैं, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
3: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
4: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
3: नहीं नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
4: हाँ बताइए।
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
4: नहीं वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
4: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
3: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
4: बिल्कुल,
3: से कम मुझे
4: बिल्कुल,
3: मालूम
4: से, होना बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जा कहाँ रहा है?
4: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
3: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको?
4: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
3: यार क्या बात कर रहा हूँ, मतलब
4: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
3: चल
4: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
3: बिल्कुल
4: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
3: आपको से फोन मत करियो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
4: क्या क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये सुपरहिट आइकॉनिक सॉन्ग पहले एक डुएट सॉन्ग होने वाला था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, आशा भोसले एंड उषा उत्थुप जी, इनफैक्ट दोनों ने इस गाने की बहुत रिहर्सल्स भी की थी। ये बात उषा उत्थुप जी ने एक टेलीविजन शो में शेयर की थी, लेकिन ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग उषा उत्थुप जी को बुलाया ही नहीं गया। जब उन्होंने फोन करके पूछा कि कब आना है रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनको बताया गया कि ये गाना अकेले आशा जी गा रही हैं। ये बात उनको बहुत हर्ट हुई उषा जी को, लेकिन उन्होंने फिर इंटरव्यू में आगे ये शेयर किया कि वो गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं जिसपे कम्प्लीटली लिखा है उषा उत्थुप जी का नाम। क्या ब्रिलियंटली गाया है उन्होंने ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: कोई या

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: अमर प्रेम फिल्म का ब्यूटीफुल गाना चिंगारी कोई भड़के। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस गाने की शूटिंग कैसे हुई थी एक बार ना कपिल शर्मा शो पे शर्मिला टैगोर जी ने शेयर किया था, सुनिए जरा।
1: अमर प्रेम में यू नो जो हुगली में हमने जो शॉट दिया ना वो रिवर में चिंगारी कोई सच अ लवली सॉन्ग, आप लोग सब थोड़ा सा आपको इल्यूशन टूट जाएंगे। जो लॉन्ग शॉट्स था वो सब एक्चुअल आउटडोर में किया गया, मगर बाकी गाने कंट्रोल करने के लाइटिंग वगैरह तो इट वाज इंडोर। एंड दैट लेक जो उन्होंने बनाए थे तो कम से कम 7-8 दिन रहा। कैन यू इमेजिन द स्टैग्नेंट, और फिर हमें चल के जाना पड़ता था, अजीब सा बदबू, स्मेल वाज लाइक दैट, बट डिस्पाइट हाउ लवली वी लुक ऑल द इल्यूजन नाउ विल गो।
0: तो अभी आप जब ये गाना सुनेंगे ना याद कीजिएगा कि शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना ऐसे बदबूदार पानी सूंघते सूंघते गाना पिक्चराइज कर रहे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: आपको पता है प्रेम चोपड़ा साहब और राज कपूर साहब दोनों साड़ू ब्रदर इन लॉज रहे हैं, मतलब इन दोनों की जो वाइव्स रही हैं वो सिस्टर्स रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और साड़ू साहब की फिल्म बॉबी से ही प्रेम चोपड़ा साहब को मिला उनके करियर का मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग। एक बार इस फिल्म में काम करने की स्टोरी उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर की थी, सुनिए।
1: राज कपूर साहब वाज अ जीनियस, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया यार एक पिक्चर में काम करना, तो उन्हें मेरी, मैंने कहा मैं तो उछल गया, मैं कहा व्हाई नॉट, करेंगे जी काम आपके साथ, कौन नहीं काम करेगा। बस वो बातों में उन्होंने कहा ये है स्पेशल अपीयरेंस। अरे मैंने कहा अच्छा आपके लिए कुछ भी करूं। अब वहां पर पहुंचे कट टू पूना, तो मैंने पूछता रहा था बीच में राज साहब क्या डायलॉग क्या है यार, मेरे को सीन्स वीन तो बता दीजिए। बताएंगे यार बताएंगे बताएंगे। तो वहां पहुंचे तो कहते जी आपका एक ही डायलॉग सारी पिक्चर में, वो क्या है, प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
0: गूज़बम्प्स अभी भी सुन के डर लगता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम

जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। One, two.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

अर्ज किया है, जरा गौर से सुनिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो ये शेर है असद भोपाली साहब का, ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, मुसाफिर अपनी मंजिल जानता है। ये वही असद भोपाली साहब हैं जिन्होंने कई सुंदर गाने लिखे हैं, जैसे कि पारस मणि एक पुरानी फिल्म थी उसके गाने, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये वही गाना है जो राजश्रीज की फिल्म हम आपके हैं कौन के एक बहुत ही प्यारे सीन में इस्तेमाल हुआ था, जहाँ सारी फैमिली बैठ के वो गेम खेल रही होती है, जिसमें माधुरी दीक्षित का वो आहा वाला मोमेंट था, और उसके बाद माए नी माए मुंडेर पे तेरी वो गाना आता है उस सीन के बाद। खैर, राजश्रीज की एक और आइकॉनिक फिल्म मैंने प्यार किया के गाने लिखे हैं असद भोपाली साहब ने, तो एक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग।
3: हाय,
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
4: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गए ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
4: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी।
3: प्यार
5: से बोल दीजिए कोकड़ो को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: रेखा ने जब हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की तो उनको उनके लुक्स, उनके वेट के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसी वजह से काफी एक्टर्स उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। क्या रेखा ने भी कभी ऐसा किया कि उनको पता चला हो कि फलानी फिल्म का हीरो ये है और इसके साथ वो काम नहीं करेंगी? सुनिए एक बार एक पुराने और एक पॉपुलर इंटरव्यू में रेखा ने इस बारे में क्या कहा था।
1: ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर कहा है कि इस रोल के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट सूट नहीं करते हैं, ये जरूर कहा, सजेशन जरूर दी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा अगर ये हीरो है तो भैया हम नहीं काम करेंगे, क्योंकि मेरा किसी ऐसे हीरो या किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसी रैपो, बैड रैपो है नहीं, सबके साथ मेरा अच्छा रैपो।
0: और कौन से वो एक्टर थे जिनके साथ उनका रैपो सबसे बढ़िया था?
1: बहुत अच्छा, मेरा तो सबसे अच्छा तो मेरा रणधीर कपूर के साथ था। Unfortunately, अब मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ।
0: Well, ये mid-80s का इंटरव्यू था। इसके बाद रणधीर कपूर के साथ उनकी कुछ फिल्में आई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

दिस आइकॉनिक सॉन्ग कंपोज बाय आरडी बर्मन। रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा भी हो सकता था कि ये गाना शायद कभी बनता ही नहीं, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स 1970 की द ट्रेन के प्रोड्यूसर्स एक्चुअली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन करने वाले थे इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, लेकिन वो इन दिनों बहुत बिजी थे। फिर एसडी बर्मन साहब को भी अप्रोच किया गया, वो भी नहीं इसका म्यूजिक कर पाए, एंड देन इवेंचुअली आरडी बर्मन को साइन किया गया। एंड फिर एज यूजुअल आरडी ने अपने आरडीएक्स ब्रूम गाने बना दिए, जिनमें से एक ये भी था द वेरी आइकॉनिक द वेरी क्लासिक गुलाबी आंखें। फिलहाल आपने किसकी याद में अपनी आंखें गुलाबी लाल पीली नीली कर रखी हैं? जिसकी भी याद में कर रखी हैं, कोई ऐसा जो आपसे बहुत दूर चला गया है उसको और आपको डेडिकेटेड है ये अगला गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

दिल देना सीखो जी। बहुत बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स में चाहे इनका नाम नहीं लिया जाता हो, लेकिन सच बात ये है कि बहुत ही बड़े बड़े बढ़िया गाने इन्होंने बनाए हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है इनके नाम पर। वो अचीवमेंट ये कि फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कॉम्पोजिशन जैसे मेल डोमिनेटेड एरिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई बढ़िया म्यूजिक बना के। मैं बात कर रही हूँ उषा खन्ना जी की, एंड दैट टू व्हेन शी स्टार्टेड लेट 50s 60s 70s। उस टाइम में तो उषा खन्ना जी के कंपोज किए हुए गाने तो हम सुनेंगे ही, उनकी बातें भी और करेंगे, लेकिन म्यूजिक कंपोज करने के साथ साथ उन्होंने कुछ गाने गाए भी हैं। और नेक्स्ट सॉन्ग जो हम सुनने वाले हैं वो मेनली किशोर दा ने गाया है, लेकिन इसमें जो थोड़े से आपको फीमेल वोकल्स सुनाई देंगे, वो जो एक हमिंग है फीमेल वॉइस में, वो उषा खन्ना जी की है। जॉनी मेरा नाम का ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
5: हो सकता है, हो सकता है।
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, जहाँ तो 2 मिनट रुक, तू कर ले, तेरे कुछ जा रहा
3: है,
5: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू।
3: हेलो
5: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga.
1: Energy, burga. Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank je bolle ho na, hamari nahi scheme hai ye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
1: है।
2: मेरा आपका वो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: सॉरी
1: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
1: कुकड़ू गो।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिन बच्चों की चॉइस बाकी सबसे अलग होती है, उनके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना कैसे जरूरी है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: बहुत दुआ है आपकी। अभी जो है वो जून का महीना चल रहा है, और जून महीना जो होता है वो दुनिया भर में प्राइड मंथ के नाम से भी जाना जाता है। ये LGBTQIA जो कम्युनिटी है उनके लिए बहुत अहम मंथ माना जाता है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था, दुती चंद जो हैं वो इंडिया की सबसे तेज महिला मानी जाती हैं, और 2019 की बात है, उन्होंने सब लोगों को ये बताया कि मुझे मोनालिसा नाम की एक लड़की से प्यार है। अब देश के लिए ट्रैक पे उन्होंने इतना नाम कमाया, शोहरत कमाई, पर सबसे पहले अपनों ने ही उनसे मुंह मोड़ लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज लाखों घर ऐसे हैं सिस्टर जहां कोई बेटा है जो किसी लड़के से प्यार करता है, कोई बेटी है जो लड़की से प्यार करती है, लेकिन सबसे बड़ा डर जो उन्हें है वो लोगों से नहीं है। उन्हें डर है खुद के घर पे डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन बहुत ऑकवर्ड होती है। मेरा आपसे सवाल है कि जब घर में बर्दाश्त उन्हें किया जाता है, गले से नहीं लगाया जाता, तो वो बच्चे अपने आप को पूरा कैसे करें?
4: सी एक्चुअली क्या है, उनको घर वालों से एक्सेप्टेंस चाहिए
3: जी,
4: और घर वालों को सोसाइटी से। बेसिकली क्या है कि हर आत्मा को रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: और उसको रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहिए उस चीज के लिए जो वो है
3: जी,
4: नॉट सोसाइटी जो चाहता है।
3: बिल्कुल।
4: वो फ्री फील करना चाहते हैं जो भी उनकी आइडेंटिटी है जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं, और इसलिए बहुत समय ले करके वो ये करेज भी रखते हैं कि अब वो सबके साथ शेयर करेंगे। बट अगेन उनको अपने घर वालों से एक्सेप्टेंस चाहिए। घर वाले तब तक एक्सेप्ट कर नहीं पाते क्योंकि उनके लिए भी ये डिफरेंट होता है, एंड इट इज द ट्रूथ कि कई बार सोसाइटी और कई बार रिलीजन या रिलीजियस हेड भी उनको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। एक्सेप्टेंस तो आप छोड़ें, और ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट,
3: हाँ, ज्यादातर
4: और ज्यादा बॉयकॉट करना, मजाक उड़ाए जाना, कई जगहों पर उनका आना जाना बंद कर देना, सोशल गैदरिंग्स में उनको इनवाइट करना बंद कर देना। इनफैक्ट कई बार उनको ये भी डर रहता है कि अगर और सिबलिंग्स हैं तो उनकी शादी कैसे होंगी, उनको स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। सो आई थिंक देयर इज सो मच फियर कि सोसाइटी उनको कैसे ट्रीट करेगी, इसलिए इमीडिएटली वो कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अपने परिवार से अपनी चॉइसेस के बारे में कैसे बताएं? आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, तो अगर मैं ऐसा एक इंसान हूँ, मैं ऐसा एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, और इस वक्त मैं 19 साल का हूँ, घर पे माहौल है, मैं अपने आप को क्या कहूँ कि मेरे अगली जो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन हो उसमें मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ? मैं अपने को क्या सलाह दूँ, क्या बात करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ?
4: मुझे लगता है कि ये जो एक अंदर में आश रहती है ना कि सब मुझे एक्सेप्ट करे, अगर इससे हम परे चले जाएं,
3: जी,
4: टेलिंग आवरसेल्फ्स और अपने को ये समझा करके कि शायद चलो ये तो कम्युनिटी डिफरेंट है, आप दुनिया में भी देखें हर एक को हर एक से एक्सेप्टेंस कहाँ मिलती है?
3: जी बिल्कुल सही है।
4: मना रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, लोगों के अलग अलग ओपिनियन होना, ये कॉमन है। सेल्फ रिस्पेक्ट उसको ही कहेंगे, वह यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू आर कम्फर्टेबल विद योर सेल्फ, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, कोई नहीं भी करता उसके बाद आप अपने से कैसे बात करते हैं?
3: वो बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी शायद वही है कि आप अपने आप को कैसे समझते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपके पास है फिर दुनिया क्या बोलती है शायद उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा।
4: कभी कभी तो ऐसा होता है सारी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है पर आप अपने को नहीं करते हैं।
3: हाँ, सेल्फ डाउट होता है।
4: तो कॉन्वर्सेशन दैट यू हैव विद योर सेल्फ, आपका अपने से कैसा रिश्ता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप वो फील करेंगे जो कॉन्वर्सेशन आप अपने से करते हैं। आप वो फील नहीं करते जो कॉन्वर्सेशन लोग आपके साथ करते हैं। अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता तो भी आपकी कॉन्वर्सेशन ऐसी है कि शायद ये आज नहीं समझते या इनको किसी चीज का डर है, बट मुझे होप है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रांसफॉर्म होंगे, देन आल्सो यू विल बी फाइन। लेकिन सब आपको एक्सेप्ट करते हैं और कोई एक है जो डिसरिस्पेक्ट करता है, एंड दैट इज द कॉन्वर्सेशन यू हैव विद योरसेल्फ, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते।
3: तो एक को बड़ा ना बनाएं जो सब एक्सेप्ट करते हैं, उस पे ज्यादा फोकस करें।
4: इस केस में मुझे लगता है कि कई बार क्योंकि इस चीज की इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसका इतना एजुकेशन नहीं है, तो जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो ज्यादा आती है। ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है। नॉर्मल लोगों को जितना रिजेक्शन फेस करना होता होगा उससे कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल से शुरू हो जाता है। आपके मना चलने का तरीका ठीक नहीं है या बोलने का ठीक नहीं, मैं कहूंगी डिफरेंट है,
3: डिफरेंट,
4: इट इज ओनली डिफरेंट, सो पीपल गिव यू नेम्स, वो आपको पीछे किसी किसी नामों से बुलाते हैं।
3: तो ये जो कांस्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी आ रही है और बहुत बचपन से आ रही है, उस केस में बच्चा कैसे उसको हैंडल करेगा?
4: उस समय तो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आता कि वो डिफरेंट क्यों है,
3: क्यों है। हाँ,
4: उसको ये तो फील हो रहा होता है कि वो डिफरेंट क्यों है, लेकिन उसको भी नहीं पता वो इतना डिफरेंट क्यों है, एंड समवेयर वो अपने से युद्ध कर रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, और वो कभी कभी सबसे अलग होकर के बहुत लोनली हो जाता है। सो आई थिंक हमें इस चीज की अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाने की जरूरत है। एटलीस्ट नाउ वी हैव रीच्ड अ प्लेस, अगर आप चाहें तो अपने को अवेयर और एजुकेट कर सकते हैं। पहले तो इस चीजों की कोई कॉन्वर्सेशन होती नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, लेकिन अब आप चाहें तो अपने को एजुकेट कर सकते हैं, एंड स्पेशली स्कूल्स में और कॉलेजेस में उस बच्चे को एकदम बॉयकॉट करना या उसको मॉक करना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट इंक्लूजन, हर एक को इंक्लूसिविटी, इंक्लूजन, एक्सेप्टेंस अच्छा लगता है, और ये फर्ज एज अ सोसाइटी, हर एक प्रोटेक्टेड और सिक्योर फील करे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक मूवी के रेफरेंस से आपको समझाते हैं LGBTQ रिलेटेड लेबल्स के बारे में, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, 1959 में बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी धूल का फूल, उसमें साहिर लुधियानवी जी ने कमाल का गाना लिखा था, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जब मैं उस गाने को सुनता हूँ मुझे लगता है ये लेबल की बात कर रहे हैं कि इस बच्चे को कोई लेबल मत दो, हम लेबल के हिसाब से नहीं चलते, हम इंसान हैं इंसान ही रहेंगे। और मुझे बहुत खूबसूरत बात लगती है इस गीत की। मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि प्राइड मंथ चल रहा है और मुझे गौरी सावंत हैं उनके बारे में याद आया, 2017 में वो एक ट्रांसजेंडर हैं और वो माँ बनना चाहती थी, तो उन्होंने गायत्री नाम के एक बच्चे को गोद लिया था। तो उस समय ये हक नहीं दिया जाता था ट्रांसजेंडर को कि वो अडॉप्ट कर पाएं। तो बहुत लोगों ने कहा कि आप कैसे माँ बन सकती हैं, किस हक से आप माँ बनी, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात कही थी कि माँ के प्यार को लेबल नहीं देना चाहिए। और मुझे इतनी छू गई वो बात क्योंकि माँ का प्यार एक ऐसी असीम एनर्जी है जिसमें एक्चुअली कोई लेबल नहीं दे सकते, हर चीज में माँ का हाथ होता है। लेकिन जब माँ की बात आती है जिनके घर में एक डिफरेंट बच्चा है, फिर वो माँ क्या करे कि रिश्ता भी बचा रहे और बच्चा भी बच जाए, क्योंकि अक्सर क्या है इस बात की ट्रेनिंग नहीं होती और उनको पता नहीं होता कि हैंडल कैसे करे। व्हाट शुड दैट मदर डू?
4: दैट इज व्हाई आई सेड कि अवेयरनेस और एजुकेशन मिलते ही कई बार आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आपको जो चीज गलत लग रही होती है कोई आपको बताता है तो वो चीज आपको राइट लगने लगती है। सी, लव क्या है? लव इज अ वेरी क्लीशेड वर्ड ना। लव कोई बाहर की चीज नहीं है, इट्स अ वाइब्रेशन, इट्स एन एनर्जी, इट्स फेल्ट। It is not what you're doing outside.
3: Right.
4: It is what you're thinking about that person.
3: Absolutely.
4: तो अगर अंदर में आप ये सोच रहे हैं उस बच्चे के बारे में कि ये अलग है या गलत है या हमारे घर में ही ऐसा क्यों है, exactly. या सोसाइटी क्या कहेंगे, बाहर आप भले सब कुछ कर रहे हैं, आप केयर भी कर रहे हैं, आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर जो लव है ना वो एक वाइब्रेशन है। जब तक आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि आई विल प्रोटेक्ट दिस चाइल्ड नो मैटर व्हाट द सोसाइटी से, वो सिक्योरिटी उस बच्चे को फील होती है। पर कई बार सबसे ज्यादा रिजेक्शन घर से आता है, घर से आता है, क्योंकि वो फियर क्रिएट होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। इसलिए आप जो बात कह रहे थे ना कि हिंदू है मुस्लिम है या कोई भी आइडेंटिटी है या कोई भी लेबल है, इंसानियत किसको कहते हैं? इंसानियत है टू बी काइंड एंड टू बी लविंग। कभी कभी वो बहुत सुंदर ये कहते हैं कि आप कितने रिचुअल्स करते हैं और कितने फास्ट करते हैं और कितनी प्रेयर करते हैं उससे अपने को धोखा नहीं दें, ये देखें कि आप दूसरों के प्रति कितने काइंड और लविंग है।
3: अच्छा, क्या बात
4: है। दैट इज ट्रू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी ना।
3: एब्सोल्युटली।
4: चाहे कोई कितना भी डिफरेंट है, आप कितने लविंग काइंड कंपैशनेट हो सकते हैं वो ह्यूमैनिटी है। बाकी तो एवरीथिंग इज इन बुक्स ना फिर।
3: एब्सोल्युटली।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

con bola, mucho enajo paega. Con bola, con bola.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: LGBTQ कम्युनिटी को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस पर्सपेक्टिव को।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरा एक दोस्त है जो ओपनली अपने आप को वो लड़के पसंद करता है और वो कहता है कि भैया मैं ऐसा हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो। तो मैं ये बात नहीं समझता था, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे नहीं समझता था। मैंने कहा भाई तुमको कोई पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, बहुत बड़ी बात है उसके, बट उसने मुझे घूम के कहा कि तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए विशाल। और मुझे तब समझ में आया कि हम कितने बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन शायद हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हमको लगता है मदद करना मतलब फिजिकल मदद करना, फाइनेंशियल मदद करना, लेकिन आप साथ में खड़े होकर भी मदद कर रहे हैं ये हमारे दिमाग में ही नहीं आता।
4: उनको सपोर्ट चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पर फिर भी आई विल नॉट से यू आर एंटायरली रॉन्ग। उस कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनिशियली चाहिए ही था, एज लॉन्ग एज यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्योर प्लेस, आपका इंटेंट बुरा नहीं है। शायद उस व्यक्ति को नहीं चाहिए, पर कम्युनिटी को अगर किसी भी रूप से हम उनको हेल्प करते हैं, हमारा भाव तो मदद करने का है, सहयोग देने का है। सी होता क्या है, हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम खुद भी बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं और हम सामने भी सिर्फ बॉडी तक देखते हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही।
4: चाहे वो काला है, गोरा है, गे है, लेस्बियन है, मोटा है, पतला है, हमारा जो लेंस है वो सिर्फ बॉडी तक जाता है।
3: बिल्कुल।
4: एक्चुअली हम बॉडी नहीं है, ये तो हमने जैसे कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। बॉडी के बियॉन्ड हम सोल है, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, वी आर बीइंग ऑफ लाइट। जिसने ये कॉस्ट्यूम लिया है, किसी का कॉस्ट्यूम मेल का है, किसी का कॉस्ट्यूम फीमेल का है, पर जो सोल है उसके अंदर दोनों क्वालिटीज है, फेमिनिन भी मैस्कुलिन भी।
3: अच्छा।
4: दोनों संस्कार है। किसी में ज्यादा कल्चरली आप जहाँ ग्रो अप होते हैं वो ज्यादा अवेकेंड होते हैं, और कई बार वो ज्यादा अवेकेंड होते हैं तो डिफरेंट कॉस्ट्यूम होते हुए भी वो अवेकेंड रह जाते हैं। बाकी अगर आप सोल को देखें एज अ सोल, हर सोल को प्यार चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सोल का कोई जेंडर नहीं होता, पर लोग बायस क्यों होते हैं, आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो सिस्टर, जब सोल का कोई जेंडर नहीं होता लेकिन शायद कुछ फैसेट्स होते हैं, जो आपने कहा फीमेल भी होते हैं मेल भी होते हैं, सोल का जेंडर नहीं होता तो इज्जत और प्यार बॉडी देख के क्यों मिलता है?
4: वही तो, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है ना एज अ सोसाइटी। व्हेन वी कम इन कॉन्टैक्ट, हम कभी उसको, इसलिए इंसानियत क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना इंसान के नाते तो ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, पर वो ह्यूमैनिटी है क्या? कि आप उस आत्मा को देखें ना, आप सिर्फ शरीर को नहीं देखें, आप सिर्फ बच्चे को नहीं देखें, आप गरीब अमीर को नहीं देखें, आप हिंदू मुस्लिम को नहीं देखें, देयर लॉट ऑफ लेबल्स। और हमारा जो व्यवहार है वो लेबल के आधार पर होता है। व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट लेबल? समझो एक रिलीजन है, उस रिलीजन के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग क्या है, वैसा मेरा आपके साथ बिहेवियर होगा। चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो नेशनैलिटी है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, उस लेबल के प्रति मेरे मन में कोई ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरा बिहेवियर आपके साथ होगा, उस लेंस के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जैसी मेरी स्मृति होगी वैसी मेरी दृष्टि होगी। जो मेरी अवेयरनेस के अंदर है, अगर मेरी अवेयरनेस के अंदर है कि हाँ भले ये ट्रांसजेंडर है, डिफरेंट है, बट ह्यूमन बीइंग है, अगर मेरी ये अवेयरनेस है तो मेरी दृष्टि में आपके प्रति रिस्पेक्ट होगी, वृत्ति एटीट्यूड में आपके लिए गुड विशेस होंगी, कृति कर्म में देयर विल बी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी होगी। स्मृति के अंदर क्या है, वैसी दृष्टि, वैसी वृत्ति, वैसी कृति और वैसी सृष्टि बनेगी। वो लोग भी आपके लिए फ्रेंड्स की तरह होंगे, इक्वल होंगे, उनको भी आप रिस्पेक्ट दे पाएंगे।
3: लेकिन अगर मेरे जहन में ऐसा है कि ये गलत है,
4: पाप है,
3: ये अलग लोग हैं, हाँ ये पाप है, तो फिर मैं उसी हिसाब से बिहेव करूंगा।
4: अलग भी नहीं देखते ना हम तो, अलग फिर थोड़ा, फिर गलत, फिर पाप, फिर नॉट एक्सेप्टेबल, बॉयकॉट, उतना रिजेक्शन, तो फिर एक्चुअली वो पाप थोड़ी ना कर रहे हैं,
3: हम कर रहे हैं।
4: कहने में बहुत इजी है वो पाप है, बट समटाइम्स आई फील द अदर पर्सन हु इज रिजेक्टिंग, हेटिंग, बॉयकॉटिंग,
3: वो पाप है लेकिन हम तो पापी हैं।
4: पर ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना होती है। समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑल्सो, उसको एक बेस बनाकर, उसको जस्टिफिकेशन बनाकर हम लोग कई बार गलत कर्म कर देते हैं।
3: इनफैक्ट वो तो पाप ही नहीं है, हम पापी जरूर बन गए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: इससे सीमा जैन का सवाल आया है कि अगर लाइफ में सभी लोग हमारे खिलाफ हों तो ऐसे समय में हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए।
3: थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि सब अगेंस्ट क्यों है। ये बात तो मैं समझ सकती हूँ कि हम कुछ भी करते हैं तो कई लोग हमारे फॉर होते हैं, कहीं अगेंस्ट होते हैं, कहीं सहयोग देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, व्हिच इज ओके।
2: सारे अगेंस्ट हो,
3: सारे अगेंस्ट होते हैं तो कई बार हो सकते हैं हमारे अंदर भी फॉल्ट है और हम शायद उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। सारे अगेंस्ट होना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है। बाकी ये जरूर है कि आप कभी भी कुछ करते हैं तो कुछ अग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, दैट इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल।
2: बिल्कुल।
3: और अग्री डिसएग्री एक अलग बात होती है, अगेंस्ट अगेंस्ट तो ज्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें क्यों वो अगेंस्ट हैं, अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करें। देखो, हर चीज में लोगों की दुआएं भी सफलता दिलाती हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: उनका हमारे से संतुष्ट होना भी जरूरी है। हम सही कर रहे हैं, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, पर कम से कम हम उनको कन्विंस करने के तो कोशिश करें। अगर वो हमारे अगेंस्ट है तो हो सकता है कि कुछ हमारे अंदर भी फॉल्ट हो, तो रियलाइज करके, चेक करके चेंज करने की जरूरत है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सुजीत ने सवाल भेजा। सिस्टर कहते हैं कि विद्यालयों में हमें सिखाया जाता है कि जीवन में नैतिकता और कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जन्म से गंभीर बीमारियां होती हैं उनको, उनके साथ गलत घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, तो लोग पूछते हैं कि उस समय परमात्मा कहाँ होते हैं। जब बच्चे सही गलत भी नहीं समझते, उनके साथ ऐसे कर्म होते हैं तो क्यों होते हैं? क्या वो उनके कर्मों का परिणाम है या परमात्मा की इच्छा है? वो ऐसे सवाल उठने पर लोगों को क्या समझाया जाए ताकि वो परमात्मा को दोषी ना ठहराएं और सही दृष्टिकोण समझ सके।
3: जब भी कुछ ऐसा होता है तो एक्चुअली हमें उस बच्चे के लिए दुख होता है। हमारा जो एक नेचुरल संस्कार है वो कंपैशन है, रहम है। किसी के साथ भी बुरा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन फिर ये भी एक सत्य है कि जिसके साथ जो हो रहा है वो उसके कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। बस फर्क ये होता है कि जब कॉस्ट्यूम बदल जाता है ना, तो हमें याद नहीं रहता। अगर वो उसी समय पर हो, जैसे अभी आज कोई बच्चा बारिश में खेल रहा है और वो कल बीमार हो जाए, तो आपको कभी आश्चर्य नहीं लगता। आप कहेंगे मुझे तो पता था, मुझे तो पता था कि ये होना है। अब ये छोटी बात है, कोई लंबा समय से हैवी ड्रिंकर होता है, फिर किसी दिन उसका लिवर खराब हो जाता है, 40 इयर्स के बाद होता है, समझो। लेकिन आप फिर भी कहेंगे कि मुझे तो पता था, डॉक्टर ने भी कह दिया था। आपको सरप्राइज नहीं होता क्योंकि कॉज और इफेक्ट सामने सामने दिखाई दे रहा होता है। डिलेड भी है लेकिन सामने सामने दिखाई दे रहा है। पर कभी कभी कॉस्ट्यूम छूट गया। कर्म कॉस्ट्यूम ने नहीं किया है, कर्म आत्मा ने किया है। इसलिए पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, पुण्य शरीर पाप शरीर नहीं कहते। आज महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छे कर्म करे, देश को आजादी दिलाई। हम महात्मा शरीर नहीं कहते, महान आत्मा कहते हैं।
2: हाँ।
3: तो कर्म आत्मा करती है। आत्मा ने कॉस्ट्यूम अपना चेंज कर लिया, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा क्या किया है। आज आपको इस सृष्टि पर लोग गलत गलत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। किसी के साथ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है तो बहुत सारे गलत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश गलत करते हुए दिखाई भी तो दे रहे हैं ना। और फिर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो गलत करते करते शरीर छोड़कर चले जाते हैं। हम कहते हैं देखो सारा जीवन गलत किया, इनके साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। अब वो फिर किसी छोटे बच्चे के रूप में आता है और उसके साथ कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं इसने ऐसा क्या किया। बट द ओनली थिंग विच इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड इज कर्म। दैट इज द ट्रूथ, दैट्स द ओनली थिंग विच इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड। पर कॉस्ट्यूम देखते हैं तो नहीं समझ में आता। कर्मा सोल करती है, सोल इज ऑन द जर्नी, इसे स्टार्ट ही कैरी फॉरवर्ड से होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। चाय गर्म है, कॉफी स्ट्रॉन्ग है और ब्रेकफास्ट क्रिस्पी है और ये नया नया दिन शुरू हो चुका है क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स शुरू हो चुका है। यहाँ पर तुम्हारे कम्यूट को थोड़ा सा और फिल्मी बनाते हैं, तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा और फनी बनाते हैं और तुम्हारे मंडे को थोड़ा सा लेस यकी बनाया जाता है। अभी वैसे मुझे पता है कि तुम अभी किचन में या तो परौंठे फ्लिप कर रहे हो या फिर जूम कैमरा ऑफ करके लाइफ को ऑन कर रहे हो या फिर कुछ लोग सिर्फ आई एम लिसनिंग टू रेडियो के नाम पर 10 एक्स्ट्रा मिनट ब्लैंकेट में पड़े हुए हैं। जो कुछ भी कर रहे हो हैशटैग रिस्पेक्ट, बिकॉज लाइफ एज इट इज प्रीटी चैलेंजिंग। उसके बारे में सोच सोच कर उसे और ज्यादा चैलेंजिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम सोचेंगे फिलहाल बॉलीवुड के तड़के के बारे में, थोड़ा बैक होम के नॉस्टैल्जिया के बारे में, थोड़ी सी गॉसिप गपशप न्यूज अपडेट्स के बारे में और अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, ये सब कुछ तुम्हें यहीं पर मिलने वाला है। साथ साथ में वेदर का फोरकास्ट भी मिलने वाला है और मैं बोले तो प्रिसिला तो मिलने ही वाली हूँ, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद छोड़कर जा रही है तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। मीनवाइल यू गो एंड लीव सम कमेंट्स ऑन माय सोशल मीडिया। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। ड्रॉप मी समथिंग टू मेक माय डे। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Ja, bana. Burka, burka. La virtua, la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Whipple, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल,
1: से,
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहाँ रहा है
2: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: हूँ नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
1: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: यार मेरे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता तो यू वुड नेवर सी मी अगेन, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पर निकल जाती। लेकिन यहाँ बैठे बैठे तो मैं टाइम ट्रैवलिंग करती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और अब हम चलने वाले हैं आज का दिन हिस्ट्री में क्यों खास था ये पता करने। ईयर था 930। आइसलैंड ने दुनिया का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली रनिंग पार्लियामेंट शुरू किया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1868, टाइप राइटर का पेटेंट मिला। देन 1894 में ओलंपिक्स के बॉसेस ऑफिशियली नाइट हुए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी। 1980 में इंडिया ने एक ट्रेजिक मोमेंट देखा व्हेन संजय गांधी डाइड इन अ प्लेन क्रैश। 1985 में एक और हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर, एयर इंडिया फ्लाइट 182 की ट्रेजेडी। आज के दिन उन सबको हम याद करते हैं जिनकी जिंदगियां उस दिन रुक गई थी। फिर 2016 में यूके ने कहा इट्स नॉट यू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रेग्जिट ने हिस्ट्री बनाई। तो देखा एक ही दिन में कितना कुछ घट सकता है। और अब अगर फ्यूचर की बात करें तो आने वाले हैं कुछ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारा मूड बनाने के लिए, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। सुन रहे हो तो मुझे फॉलो भी कर लो जाकर, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. और 15, हाँ सिर्फ 15 साल की एज में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी टीम इंडिया जर्सी रिसीव कर ली है. BCCI ने वीडियो शेयर किया और कैप्शन ऑलमोस्ट स्टेडियम अनाउंसर मोड में था. लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोमेंट द नेशन हैज बीन वेटिंग फॉर एंड ऑनेस्टली सेम एनर्जी सेम. वैभव ने भी कहा है कि जर्सी देखते ही उनकी स्माइल रुक ही नहीं रही थी और मुझे बस ये सोचकर हंसी आ रही है कि 15 पे हम क्या कर रहे थे. मैं होमवर्क अवॉइड कर रही थी, मेरी लाइफ में कोई क्रश था नहीं, दूर दूर तक करियर की कोई संभावना नहीं थी और पासवर्ड मेरा था Priscilla123 और मैं सोच रही थी कि मैं बहुत बड़ी हैकर हूँ. लेकिन इमेजिन स्कूल आईडी से लेकर टीम इंडिया की जर्सी तक, दैट इज नॉट जस्ट ग्रोथ, दैट इज लाइफ इन फास्ट फॉरवर्ड मोड. एंड आई होप वो इसी तरह तरक्की करते रहे. अभी UK टूर आ रहा है और पूरा देसी कम्युनिटी अब ऑफिशियली इन्वेस्टेड है क्रिकेट में. एंड आई होप वैभव सूर्यवंशी शाइन्स लाइक ऑलवेज. एंड स्पीकिंग ऑफ शाइन, RK Jewels लेकर आए हैं गेट रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइस. जीरो लेबर चार्जेस तुम्हें देने हैं, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस तुम्हें देने हैं सिर्फ और सिर्फ RK Jewels पर, जहां पर गोल्ड एंड डायमंड की असली वैल्यू एंड प्योर वैल्यू तुम्हें मिल रही है. RK Jewels पर मिलता है बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस में, तो वहां जाना तो बनता है. फिलहाल मिर्चीदार गाना तो बनता है सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप अगर करना है तो 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244, दैट्स माय नंबर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारे आ चुके पता करें मौसम का हाल चाल क्या है। तो अभी फिलहाल बाहर का सीन ये है कि 70 डिग्रीज तो तापमान है इन फारेनहाइट एंड क्लाउडी वाइब्स है, लेकिन फील हो रहा है 73 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। एंड अराउंड 11 बजे रेन की एक्सपेक्टेड एंट्री होने वाली, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि बरसात हो सकती है। बिल्कुल उसी दोस्त की तरह जो कहता है मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन लगाता है पूरे 2 घंटे। लास्ट 24 आवर्स में भी स्काई ने हमें काफी बरसात दी, 43 मिलीमीटर्स की बारिश हो चुकी है ऑलरेडी। एंड आज भी कुछ बची हुई है अराउंड 5 मिलीमीटर्स विच इज एक्सपेक्टेड टुडे। तो आज वेदर ने ऑफिशियली डिसाइड किया है कि तुम अपने अम्ब्रेला के बिना बाहर नहीं जाने वाले हो, या फिर अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल बनाओगे तो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा विदाउट अम्ब्रेला। और कंपैरिजन करें तो कल का टेम्परेचर था 64 से लेकर 77 डिग्री फारेनहाइट तक, और आज ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, सेम तरह का ड्रामा है, लेकिन बरसात थोड़ी सी कम होने वाली है। और सर्वाइवल के लिए तुम्हें बाहर जाते वक्त लेयर के प्लेयर बना जरूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, और SPF 50++++ की बिल्कुल ना करें, बिकॉज सन अराउंड द कॉर्नर ही है। एंड ऑफ कोर्स मुझे फॉलो करें, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनने वाले हो तीन तीन अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले ओहायो की पुलिस ने एक फैंसी रोबोकॉप को रिटायर कर दिया है आफ्टर अराउंड 10 months, बिकॉज अपेरेंटली उसने ज्यादा कुछ किया नहीं है काम पर, बस पार्किंग लॉट में राउंड्स लगाए हैं और वाइब्स बनाए हैं। कैमरा थे, टेक था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक्शन मिसिंग था, इसीलिए इसे रिटायर कर दिया गया है और रिफंड भी मिल चुका है। नंबर टू पर फुटबॉल वर्ल्ड का थर्मोस्टैट फिर गर्म हो चुका है। लायनल मेसी ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में रेकॉर्ड ब्रेकिंग गोल स्कोर किया, लेकिन मैच के बिल्डअप पर कुछ डिबेट्स शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्ले कंटिन्यू होना चाहिए था और कुछ लोगों का कहना है कि फाउल चेक होना चाहिए था। एंड आखिरी खबर है दिल जीतने वाली फ्रॉम क्रिकेट। यशस्वी जायसवाल ने फादर्स डे पर एक नई मर्सिडीज SUV अपने डैड को डेडिकेट की है। फैमिली फोटो भी खींचा है विद रेड रिबन एंड फुल फील्स। फ्रॉम स्ट्रगल स्टोरीज टू फैमिली सेलिब्रेशन, कभी कभी सक्सेस का बेस्ट फ्लेक्स इज दिस। बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ हम भी अब मूव ऑन करते हैं मिर्चीदार गानों की तरफ। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है?
2: आप कौन बोल रही है?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
2: है,
4: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय देसी फैम, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और जापान ने अनाउंस किया है कि 1 जुलाई से वीजा फीस उनकी बढ़ रही है, और छोटा मोटा नहीं बढ़ रही, सीधे 5 गुना ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि 5 टाइम्स वो अपनी वीजा फीस इंक्रीज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका ये पहला मेजर वीजा फी रिविजन है सिंस 1978। इसका रीजन है इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट चेंजेस। सिंगल एंट्री वीजा की फीस अब 15,000 yen तक और मल्टीपल एंट्री वीजा की फीस 30,000 yen तक पहुंच सकती है फॉर रिवाइज फी स्ट्रक्चर। मतलब जापान तो स्टिल ब्यूटीफुल है, लेकिन अब पॉकेट पर थोड़ा सा असर होने वाला है इफ यू वांट टू विजिट जापान। लेकिन तुम्हारे पॉकेट को रिलैक्स करने वाली बात अब बताती हूँ। तनिष्क लेकर आए हैं फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, जहां पर तुम्हें $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम मिल रहा है ऑन एक्सचेंज गोल्ड अपॉन डायमंड परचेजेस। और साथ में अगर तुम्हारे पास पुराना गोल्ड रखा हुआ है जो कि 9 कैरेट से ऊपर है, तो उसे वहां पर लेकर जाओ, एक्सचेंज कराओ, और तुम्हें 0% डिडक्शन उस पर मिलेगा। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सुनते रहो मुझे और कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647 2 double 4. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरी मम्मी की जय।

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरा नाम है प्रिसिला। और आज 23 जून के बेबीज, ये तुम्हारा साइन है कि तुम नॉर्मल नहीं हो बल्कि प्रीमियम बैच हो। देखो कौन कौन तुम्हारे साथ बर्थडे स्क्वाड में है। ऑस्कर विनिंग पावर हाउस एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, मतलब इनका टैलेंट लेवल अलग ही है। सॉन्ग राइटर एंड सिंगर जेसन मार्स। एंड एक्टर्स में है सेल्मा ब्लेयर, जोएल एडगर्टन एंड फुटबॉल लेजेंड में हेडबट वाले जिनेडिन जिदान। मतलब अगर तुम आज के दिन इस धरती पर प्रकट हुए थे ना, तो थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा जीनियस और थोड़ा वर्ल्ड क्लास एनर्जी अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन होल्ड ऑन, मैथ्स वाले भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज एलन ट्यूरिंग, द मैन हुज आइडियाज हेल्प्ड शेप मॉडर्न कंप्यूटिंग, उनकी भी आज बर्थ एनिवर्सरी है। प्लस निकोल शर्जिंगर, मेलिसा राउच, डफी एंड म्यूजिक जज रैंडी जैक्सन, इन सबका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है, रिमाइंडर, एज सिर्फ एक नंबर है, लेकिन बर्थडे के दिन कैलोरी वाला नंबर काउंट नहीं होता है। तो आज के दिन खाओ, पियो, ऐश करो, खुद को ट्रीट करो, एक्स्ट्रा चाय, जूस, जो कुछ भी पीना है वो पियो। और आज के दिन किसी को ये मत बोलो यार कि आज बस एक नॉर्मल डे है, बिकॉज इट इज अ डे टू सेलिब्रेट यू। एंड मुझे अपने बर्थडे शाउट आउट एंड बर्थडे इन्वाइट भेजा जा सकता है, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज एम RCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, my Mirchi fam, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. क्विक पॉज लेंगे हम यहाँ पर म्यूजिक का, क्योंकि अब टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुनने का गोल्ड रेट अपडेट.
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड रेटिंग एट $4,330, $4,330 पर ट्रे आउंस के साथ. गोल्ड की प्राइस अबाउट $200 आउंस अपवर्ड ट्रेंड पर है. $200 ट्राई आउंस गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से ऊपर चले गए हैं. इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, राज ज्वेल्स के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑफर्स में आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड. आप गोल्ड का प्राइस आज लॉक करके ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे, और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ, बिना किसी हिडन फी के 9 मंथ की फाइनेंसिंग ऑप्शन में ज्वेलरी आपकी और गोल्ड का प्राइस लॉक करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: देयर यू गो, योर गोल्ड रेट अपडेट डन एंड डस्टेड. अब फटाफट से मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop scrolling for next 1 minute. क्योंकि मैं बोले तो Priscilla तो मैं बताने वाली हूँ Mirchi Mornings पर around the world क्या कुछ घटा है.
2: Mirchi Hour का 3.
1: Number one पर reports के मुताबिक Cred founder Kunal Shah is stepping in to lead WhatsApp globally. हाँ जी, वो ऐप जहाँ फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग शेयर होता है 83 टाइम्स और 100 मैसेजेस के थ्रू सर्वाइव किया जाता है फैमिली ग्रुप्स में, मेटा के मार्क जकरबर्ग ने उनकी तारीफ करते हुए कहा है बिल्डर मेंटालिटी है एंड ग्लोबल विजन है एंड प्रीटी सून ही कुड लीड व्हाट्सएप ग्लोबली. एंड नंबर टू पर यूके के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा में महर्षि सुश्रुता का 90 किलोस का ब्रॉन्ज स्टैच्यू अनवेल हुआ है. सुश्रुता को सर्जरी का फादर माना जाता है और उनकी राइटिंग्स सुश्रुता संहिता को सर्जिकल नॉलेज और अर्ली रिकंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स के इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट में काउंट किया जाता है. एंड नंबर थ्री पर गाना के एक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जो पहले भी फुटबॉल इंजरीज के बारे में बोल्ड क्लेम्स कर चुके हैं अब हेडलाइंस में है आफ्टर सेइंग ही फोकस्ड ऑन हैरी केन अहेड ऑफ द मैच. इम्पोर्टेंट रिमाइंडर ये है कि फुटबॉल मैचेस गोल्स टैक्टिक्स और प्लेयर्स डिसाइड करते हैं लेकिन इंटरनेट अपनी थ्योरी खुद डिसाइड करता है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझे सुनते रहो और साथ में मुझसे बातें भी कर लो. इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba, la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: Bank se bolle ho na, hamari nahi scheme hai ye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: सॉरी
2: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop everything क्योंकि मॉर्निंग अब हो चुकी है सुपर मॉर्निंग्स बिकॉज़ मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब आ चुका है राशि जोन पार्ट वन. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में.
2: मिर्ची राशि जोन
1: एरीज यानी मेष राशि. आज अगर घर या ऑफिस में ड्रामा आएगा तो गेस व्हाट, तुम अनऑफिशियल क्राइसिस मैनेजर बन जाओगे. बेसिकली तुम मैं होने वाली एनर्जी पोर्ट्रे करने वाले हो. लकी कलर फॉर यू इज रेड. लकी नंबर इज 9. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. कंफ्यूजन लेवल हाई है लेकिन गुड न्यूज ये है, नो वन एल्स अंडरस्टैंड्स लाइफ टुडे ईदर, सो रिलैक्स, प्रिटेंड कॉन्फिडेंस वर्क्स. लकी कलर इज ग्रीन. लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि. यूरेनस एनर्जी है बॉस मोड में. इवन बोरिंग काम भी तुम्हें फील होने वाले हैं लाइक मिशन इम्पॉसिबल और तुम सक्सीड भी कर जाओगे. लकी कलर इज येलो. लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि. लाइफ डिसीजंस आज फ्यूचर को ग्लो कर सकते हैं. जुपिटर सेज एंजॉय योर लाइफ. मैं हूं ना. लकी कलर इज ब्लू. लकी नंबर इज 2. दैट राइम्ड. लियो यानी कि सिंह राशि. सेकेंड चांसेस का सीजन है. जो पहले फ्लॉप था आज तुम उसे स्टैंडिंग ओवेशन बना दोगे. लकी कलर इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि. ओपिनियन स्ट्रॉन्ग है बट शाउटिंग कॉम्पिटिशन मत बना लेना यार. क्वाइट कॉन्फिडेंस इज योर सुपर पावर टूडे. लकी कलर इज व्हाइट. लकी नंबर इज 4. एंड बाकी बची 6 राशियों के लिए फटाफट से आती हूँ मैं थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो मिर्चीदार बैंगर्स. मेरा नाम है प्रिसिला. मुझसे कनेक्ट करो सोशल मीडिया पे. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033 6472 4. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे राशियाँ।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी तुला राशि, नेबरहुड वाइब्स इंटेंस हो सकती है, पर तुम पीस मेकर मोड में हो। बेसिकली तुम HR प्लस थेरेपिस्ट का कॉम्बो बने हो आज। लकी कलर इज पिंक, लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, रिएक्शन को कंट्रोल करो, क्योंकि आज तुम्हारी एनर्जी ही डिसाइड करेगी आउटकम वाओ होगा या नॉट ना होगा। लकी कलर इज ब्लैक, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, ड्रीम्स थोड़े से डिलेड हो सकते हैं बट कैंसिल नहीं हुए हैं। इन शॉर्ट, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। कीप गोइंग, यूनिवर्स इज लोडिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स जल्दी ही। लकी कलर इज पर्पल, लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, रिलेशनशिप्स रीबूट मोड में है। मैसेज करो, टॉक करो, थोड़ा इमोशनल अपडेट इंस्टॉल करो। लकी कलर इज ब्राउन, लकी नंबर इज 10। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, स्पीक अप टुडे, क्योंकि नेक्स्ट वीक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आ रहा है और वर्ड्स ऑटो करेक्ट फेल होने वाले हैं। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 11। पाइसीज यानी मीन राशि, पीपल अंडर एस्टिमेट यू, परफेक्ट। आज तुम क्वाइटली सरप्राइज करने वाले हो लोगों को, फुल मैं चीज बड़ी हूँ, मस्त मस्त रिवील होने वाला है। लकी कलर इज सी ग्रीन एंड लकी नंबर इज 12। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, तो वाइब करो ना मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और वैसे ही आज का फाइनल मोमेंट भी आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन जाने से पहले फीफा की कुछ खबर बताकर जाती हूँ। ईरान टीम ने लॉस एंजलिस स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में एक 74 वर्ड का हैंड रिटन नोट छोड़ा है आफ्टर देयर ड्रॉ अगेंस्ट बेल्जियम। एंड ऑनेस्टली इट्स लेस स्पोर्ट्स अपडेट एंड मोर ह्यूमैनिटी का इंस्टाग्राम कैप्शन। उन्होंने लिखा है, दे केम विद प्राइड, प्लेड विद ऑनर एंड लीव कर रहे हैं विथ डिग्निटी। और सबसे ब्यूटिफुल लाइन उन्होंने लिखी, मे पीस, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप प्रिवेल अमंग ऑल नेशंस। मतलब स्टेडियम के अंदर तो कॉम्पिटिशन

काउंट करती है, वहाँ पर कुछ लोग रिस्पेक्ट काउंट कर रहे हैं। और देसी लाइफ में तो हम यही करते हैं, हम कितना भी दूर क्यों ना हो अपने होम से, अपने पीपल से, लेकिन कनेक्ट करते हैं हमारे कल्चर और काइंडनेस की वजह से बाहर मिले दूसरे दोस्तों से, और उन्हीं को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं। अब घर से इतने दूर तुम रह रहे हो, यहाँ पर भी तो तुमने अपने लोग जुगाड़ लिए हैं, एंड दैट इज दिल से दिल का कनेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, बट जाने से पहले फॉलो करना मत भूलना, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट्स MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Radio Mitri New York. It's hot. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

छोटे होते ना मैंने टीवी पे एक फिल्म देखी और उस फिल्म के हीरोज देख के एक्चुअली एक गाना पर्टिकुलरली देखा। उसमें जो दो हीरोज थे उनको देख के मैंने ऐसे बोला, ये कैसे हीरोज हैं यार, ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये दो हीरोज थे दीपक पराशर और राज बब्बर। भाई देखिए उस टाइम पे हम आमिर खान, सलमान खान ऐसे लोगों को देखते थे तो इनके कंपैरिजन में ऐसे लुक्स को कंपेयर करते थे ना। वो तो बाद में बड़े हो गए समझ में आया कि फिल्मों में काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको गुड लुकिंग होना चाहिए, आपको टैलेंटेड भी होना चाहिए। एंड राज बब्बर साहब स्पेशली इन दैट सॉन्ग, वो पार्टी सॉन्ग होता है उसमें वो ऐसे मुंह सा बना के रहते हैं बिकॉज अपेरेंटली जो हीरोइन होती है वो उनसे ब्रेकअप करके किसी और से शादी कर रही है। तो राज बब्बर साहब ऐसे हैरान परेशान दोनों हाथ उन्होंने ऐसे पीछे बांधे हुए हैं। खैर मुझे आज भी याद है वो गाना कौन सा है, तो वो गाना सुनते हैं और सुनेंगे राज बब्बर साहब की फिल्मी जर्नी आज शो पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची। हेलो
2: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
1: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
1: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
2: हाँ बताइए।
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
2: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
2: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
1: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम से कम मुझे
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: जा कहाँ रहा है?
2: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
2: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
1: यार क्या बात कर रहा हूँ, मतलब
2: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
1: चल
2: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
1: तो आपको से फोन मत करो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: बहुत से एक्टर्स गुरुदत्त साहब, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन साहब इनकी फिल्में देख के फिल्मों में आने के लिए इंस्पायर हुए, लेकिन राज बब्बर साहब, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। राज बब्बर साहब की फिल्मों में आने की फर्स्ट इंस्पिरेशन थी दारा सिंह जी की फिल्में। एक इंटरव्यू में राज बब्बर जी ने शेयर किया था, सुनिए।
1: कि वाकई मैंने सबसे पहले जिन फिल्मों से मैं प्रभावित हुआ था वो दारा सिंह जी की फिल्में थी और मुझे बहुत मजा आता था। लेकिन जंप दारा सिंह जी के बाद जो दूसरा जो जंप हुआ वो हुआ दिलीप कुमार साहब का। तो दारा सिंह से दिलीप कुमार, ये मेरी जिंदगी के अंदर दो फिल्मी जो है इंस्पिरेशन थी जिनसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया।
0: चलिए इसी बात पे दिलीप कुमार जी का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। हिट, हिट, हिट, हिट गाना। हिट।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: आपको पता है राज बब्बर साहब और शाहरुख खान का क्या कनेक्शन है? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत ही पुराना और बहुत ही प्यारा कनेक्शन है। वो ये कि 1973 से 75 तक जब राज बब्बर साहब दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फिल्मी पढ़ाई कर रहे थे, तब वहाँ पे छोटे से शाहरुख खान काफी आते जाते थे। इस बारे में शाहरुख ने सुनी एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: हाँ, मेरे फादर जो थे बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे, तो मैं आके वहाँ कैंटीन में बैठता था और सारे बड़े बड़े प्लेस मैंने पुराने किले में देखे, जो इंडिया के आई थिंक सबसे अच्छे प्लेस थे। और मैं 8-9 साल का था और सारा दिन बैठ के मैंने एक्टर्स को देखता रहता था। राज बब्बर साहब तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनकी गोद में बैठा रहता था। मैं ऐसा राज बब्बर साहब को बब्बर शेर अंकल बोलता था, मेरी दोस्ती उनकी बचपन से, गोद में घूमता था मैं उनकी। मैं बता सकता हूँ, अभी वो मुझे बहुत डांटेंगे, मैं बताता हूँ। तब हम उस प्ले में सॉरी किसिंग सीन था, वो बड़ा रियल लाइफ प्लेस हुआ करते थे। तो मैंने एक दिन उनसे बोला, अंकल आप सच में किस करते हो इनको? तो कहते बेटा जाके आंटी से पूछ लो। तो उन्होंने मुझे काफी ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मुझे बदमाशी सिखाई, लेकिन बहुत प्यार किया मुझको राज बब्बर साहब।
0: क्या बात है, चलिए इसी बात पे हम दिल को छूने वाला ये होठों को छू लो तुम गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: लगा लगा लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: चांद की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
0: ओहो, ओहो, ओहो, ओहो, ओहो।

0: प्यार में लोग अक्सर पैसे भी गंवा देते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा काफी किया था राज बब्बर साहब ने, जिस फिल्म में उनको स्मिता पाटिल जी के साथ काम करने का मौका दिखता था वो अपनी प्राइस ऐसे हाफ कर देते थे 50%। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: जया ये सच है, मुझे एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी, उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था और भी वैसे भी अच्छा लगने लगा था। वो दोनों ही बातें थी, बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ में एक साथी के साथ में आप काम करें और दूसरा फिर आपको किसी की सोबत किसी के साथ उठना बैठना।
0: जी वैसे इनकी दोस्ती की शुरुआत नोकझोंक से हुई थी। पहली बार ये मिले थे 1982 की फिल्म भीगी पलकें के सेट पर। मैं यानी कि चारू आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट है पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मिड और लेट 70s में ऐसा बहुत बार हुआ कि लक और शोहरत पाने का चांस राज बब्बर साहब के ऐसे साइड में से गुजर गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में उनको रोल मिलते मिलते रह गया, या उनको साइन भी कर लिया गया तो बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया। फाइनली उनको पहचान मिली 1980 की BR चोपड़ा की इंसाफ का तराजू फिल्म से, जिसमें उनका रोल ना उफ इतना नेगेटिव था, कोई एक्टर ये रोल करने को तैयार नहीं था। इस बारे में सुनिए राज बब्बर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: जी हाँ, कोई करने को तैयार नहीं था वो, क्योंकि नेगेटिव रोल था और बहुत ही इस तरह का रोल था कि सोच रहा था कि जो भी एक्टर करेगा उसकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जब चोपड़ा साहब ने मुझे इस रोल के लिए कहा तो मेरा खुशी के मारे ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं थिएटर से गया हुआ था और थिएटर के एक्टर के नाते मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई हीरो कर रहा हूँ, पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है। क्योंकि थिएटर में हम लोग वो रोल क्लियर करते थे कि जो बेहतरीन रोल होता है, जो सेंट्रल रोल होता है। तो मुझे लगा ये कहानी पूरी इस किरदार पे, इस करेक्टर की वजह से है कि ये जो करता है उसके बाद कहानी बनती है। चोपड़ा जी को हाँ किया, मैंने कहा मैं करना चाहूंगा।
0: और ये खतरनाक नेगेटिव रोल वाली फिल्म देखने जब ये अपनी मम्मा के साथ, अपनी फैमिली के साथ थिएटर में गए तब क्या हुआ, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi. Only on Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. La vida bala, murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
2: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गए ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मैडम, आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी। प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: छोटी होती ना मुझे राज बब्बर साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, क्योंकि जो भी उनकी फिल्में देखो इतने नेगेटिव रोल कई कई में होते थे। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जो वो पॉपुलर हुए ना वो 1980 की फिल्म इंसाफ का तराजू से पॉपुलर हुए, जिसमें उनका इतना नेगेटिव रोल था। और जब इस फिल्म के प्रीमियर पे वो अपनी फैमिली के साथ गए ना तब क्या हुआ, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
1: जब उसका प्रीमियर हुआ तो मैं अपनी माँ के साथ में विज्ञान भवन में देखने के लिए गया था, और हमारे पास में गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो टैक्सी में आए थे परिवार सब। तो जब यहाँ हम फिल्म देख के इंटरवल में बैठे थे तो हमें किसी ने पहचाना नहीं, फिल्म देखते रहे। उसके बाद एंड में बहुत गालियाँ पड़ रही थी मुझे, इंटरवल में भी हर आदमी गाली दे रहा था और खासकर औरतें बहुत गालियाँ दे रही थी, तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगा। तो जब हम टैक्सी में बैठ गए तो मेरी माँ रोना शुरू हुई, तो मुझे लगा खुशी के मारे आंसू आ रहे, उसके बेटे ने फिल्म में काम किया है। तो मेरे सिर पे हाथ फेरे जाए तो मैंने पाँव छू लिए उसके, तो मैंने जब पाँव छू तो मेरे सिर पे हाथ रख देती, बेटा हम कम खा लेंगे लेकिन तू ऐसा काम मत। तो मुझे लगा कि मेरी 3 साल की ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग और मेरी जो मेरी मेहनत थी, मैं लगा कि मेरी कामयाबी मिल गई, कि मेरी माँ ने भी समझा कि मैं ऐसा ही काम करता हूँ, ऐसा काम ना करूँ, तो मैं अपने उस रोल में सफल हुआ।
0: क्या ही बात है, मजा आ गया सुन के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: राज बब्बर साहब ने 1975 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन पॉपुलैरिटी मिलते मिलते उनको अर्ली 80s हो गया। इस बीच में उनके पास काफी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन हाथ कुआई मुंह न लगी। बल्कि वो तो प्रकाश मेहरा साहब की एक बहुत बड़ी फिल्म में कास्ट भी हो गए थे। ये कब हुआ था, क्या सीन था, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: 78 की बात, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के रिलीज के लिए वो दिल्ली आए हुए थे। मेरे एक काम को देखकर प्रकाश मेहरा साहब ने बुलाया दिल्ली में मेरा एक, और मुझे उन्होंने दो फिल्मों के लिए साइन किया। मैंने कहा साहब मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आप मुझे काम दे रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म में काम दे रहे हैं, बहुत बड़ा रोल दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास वहाँ रहने को कोई जगह नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना मेरा कोई दोस्त है। तो बोले क्या चाहते हैं? मैंने कहा साहब अगर आप मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे एक साल के रहने की जगह दे दी, फिर देखना शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा कि ओके, कब आना चाहते हैं? मैं साहब 1 जनवरी 1979। उन्होंने अपने आदेश का तवन इसका एड्रेस लेकर टिकट भुजवा। पहली बार मुझे हवाई जहाज की टिकट दी थी और मैं हवाई जहाज में बैठा था।
0: भाई बैठ के ये सपनों की नगरी बॉम्बे तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ पहुंचते से इनके सपने टूट गए, क्योंकि जिस फिल्म की ये बात हो रही थी उसमें इनको हटा के शशि कपूर साहब को साइन कर लिया गया। अमिताभ बच्चन भी थे उस फिल्म में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: आपको पता है नमक हलाल फिल्म में जो रोल शशि कपूर साहब ने निभाया था उसकी फर्स्ट चॉइस विनोद खन्ना जी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन विनोद खन्ना साहब तब फिल्में छोड़ रहे थे, तब एक नए एक्टर को साइन किया गया, राज बब्बर जी को। लेकिन उनके साथ फिल्म के काफी लोग काम करना नहीं चाहते थे। फिर शत्रुघ्न सिन्हा साहब को लाया गया, उनके साथ अमिताभ बच्चन काम करना नहीं चाहते थे। तो इस फिल्म में रिप्लेस किए जाने के बारे में एक बार एक इंटरव्यू में सुनिए राज बब्बर साहब ने क्या कहा था।
1: सर, मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहे कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो छीन के और ले जाता था, लेकिन छीन के नहीं कहूंगा। मुझे प्रकाश मेहरा साहब ने दो फिल्मों के लिए साइन किया था, एक नमक हराम थी और एक और फिल्म थी नमक हलाल साइन किया था। यहाँ से लेके गए थे, मैंने उनसे कहा था भाई मुझे, मेरे पास में वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, आप सबसे पहले मुझे घर दीजिए। तो उन्होंने मुझे रहने के लिए एक साल के लिए जगह दी। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी मजबूरी है तो मैं इसमें हम रोल नहीं दे पाएंगे, रोल नहीं दिया, लेकिन साल भर के लिए उन्होंने मुझे वो कमरा और वो घर दे दिया। और बस वो घर वो कमरा था जिसकी वजह से आज मैं बम्बई में अपना घर बना सका।
0: चलिए, घर भी बन गया, बाद में करियर भी बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @RJ.Charu, RJ.CHARU। सुनते रहिए मिर्च।

0: लेट 70s में जब राज बब्बर साहब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, उनको दो बहुत बड़े रोल्स के लिए साइन किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक तो नमक हलाल में जो शशि कपूर साहब का रोल था वो, और दूसरा शक्ति फिल्म में जो अमिताभ बच्चन साहब का रोल था, दोनों रोल्स में उनको रिप्लेस कर दिया गया। शक्ति फिल्म को लेकर उनको काफी दुख हुआ, बिकॉज अपने आइडल दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका तब उनको नहीं मिला। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए राज बब्बर साहब ने क्या कहा था।
1: ये सच है कि मुझे सलीम जावेद साहब ने दिल्ली में, मैं प्ले करता था, नाटक करता था, यहाँ से मुझे पिकअप किया था और मेरा प्ले देखा भी उन्होंने। फिर मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, मेरा स्क्रीन टेस्ट जो है दिलीप कुमार साहब को दिखाया गया। प्रोड्यूसर मुशीर रियाज साहब थे, डायरेक्टर अमीर सिप्पी साहब थे, मैं सेलेक्ट हो गया। फिर कुछ कमर्शियल हालात की वजह से मुझे उस फिल्म में से हटा दिया गया बाद में, पहले साइन हो गया था।
0: वैसे इस फिल्म में अगर वो काम करते तो स्मिता पाटिल जी के ऑपोजिट होते। कोई ना, उसी साल भीगी पल के नाम की एक फिल्म में उनके ऑपोजिट हो गए। चलिए, जिस चीज ने होना होता है वो ऐसे नहीं तो वैसे करके हो ही जाती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं
3: आप? कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
5: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन
3: यार, भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
5: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे कुछ जा रहा
3: है?
5: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: हाथ को आया मुंह न लगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और बहुत हुआ ऐसा राज बब्बर जी के साथ भी जब वो लेट 70s में अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। भाई 1975 में NSD से पास हुए, फिर 1977 में एक फिल्मों वाला टैलेंट शो भी जीता। उनके थिएटर शोज देखकर उनको बहुत सारी फिल्मों में लेने की बात हुई, लेकिन किसी फिल्म से उनको बिना बोले निकाल दिया गया, किसी फिल्म से बोल के निकाल दिया गया। इनफैक्ट एक फिल्म में तो उनको एक बहुत ही वियर्ड वजह से निकाला जाने वाला था, लेकिन थैंक्स टू फिल्म की हीरोइन उन्होंने उस फिल्म में काम किया। वो कौन सी फिल्म थी, इस बारे में राज बब्बर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, सुनिए।
1: यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हो चुका था, तो लोग बहुत सारे जानते थे। मोहन सहगल जी डायरेक्टर थे, वो फिल्म बना रहे थे दौलत। उस फिल्म में सारिका के ऑपोजिट एक रोल था, और वो सहगल साहब की वजह से मुझे दौलत फिल्म मिली। शूटिंग हुई, शूटिंग होने के बाद में प्रोड्यूसर को मेरी नाक अच्छी नहीं लगी कि मेरी नाक बहुत लंबी है। उन्होंने मेरे रोल के लिए वीरेंद्र खाटके जी को ले लिया। थैंक्स टू सारिका जी, उन्होंने बोला प्रोड्यूसर को, आपने ले लिया, चलिए शूटिंग कीजिए, क्यों किसी का नुकसान करना। सारिका जी को याद भी नहीं होगा, लेकिन सारिका जी की फिल्म में मैं पहली बार आया था यहाँ मुंबई में।
0: वेल, इस फिल्म की शूटिंग लेट 70s में हुई थी, लेकिन ये रिलीज जाके 1982 में हुई थी। और अभी हो रही है एक म्यूजिकल ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: बूंद बूंद सागर बनता है, कदम कदम एक राह बने।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है, पूरा निबंध लिखना हो तो शुरुआत एक वाक्य से ही होती है ना। और एक वाक्य भी नहीं बोलने को मिला था राज बब्बर साहब को उस फिल्म में जिसकी शूटिंग उन्होंने सबसे पहले की थी। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
2: मैंने वो फिल्म 500 रुपए में करी थी, फिल्म का नाम था शारदा। वैसे मैं उस फिल्म में सेकंड हीरो था सारिका जी के सामने, लेकिन उस एंड में मेरा चेहरा नजर आता है और जितेंद्र साहब जब मुझे पकड़ लेते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं पहचाना आपने, तो सारिका कहती है वही है। बस इतना सा लाइन थी मेरी।
1: वही है, लेट 70s की बात है। और ये फिल्म फाइनली जाके 1981 में रिलीज हुई थी। तब तक तो राज बब्बर जी पता नहीं कितनी फिल्मों में कितने वाक्य कितने सही सही डायलॉग्स बोल चुके थे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।
3: अभी अलविदा मत...

0: वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनकी डायलॉग डिलीवरी क्या कमाल की है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये है राज बब्बर साहब और इनका एक डायलॉग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है 1983 की मजदूर मूवी का, जिसमें एक इंजीनियर होते हैं और फैक्ट्री की मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सुरेश ओबेरॉय जो मालिक होते हैं वो इनको बुलाते हैं रिपेयर करने के लिए, तो बस ये हथौड़ा मारते हैं। उसके बाद की डायलॉग बाजी सुनिए।
1: क्या मजदूरी हुई तुम्हारी? 1000 रुपया। एक हथौड़े का 1000?
2: जी हाँ।
1: हथौड़ा मारने का 1 रुपया और 999 रुपए ये जानने के कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए।
0: समझे। वैसे विलन के रोल में भी इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारे हैं। इनका एक डायलॉग एक टीवी शो पे इनको बोलने को कहा गया, थोड़े से पॉलिटिशियन मोड में आके इन्होंने डायलॉग बोला, सुनिए।
3: देखिए मैं बहुत शरीफ आदमी हो गया हूँ, आपके कहने से बोल देता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि लोग कुत्ते की मौत को भूल जाएंगे।
0: चलिए इसी बात पे मेरे यानी कि चारू की तरफ से है बाय, हेलो हाय यहीं पर होगी पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: देखो सेफ खेलना इज नॉट हिज कप ऑफ टी।
1: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: समय रायना इज द नेम। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड यस आई वॉच्ड इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का नया नवेला एपिसोड जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा फोर्स्ड लगा। हाँ, हम दोनों के ओपिनियंस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं बट दैट्स व्हाट ह्यूमैनिटी इज, राइट? एनीवे, टॉकिंग अबाउट दिस एपिसोड जिसमें अल्फा गर्ल्स, बोले तो आलिया भट्ट और शर्वरी आई थी, जहां एक तरफ मुझे शर्वरी किक एस लगी जिस हिसाब से उन्होंने बीच बीच में जोक्स मारे, समय रायना की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ले भी ली क्लास, बट ऑन द अदर हैंड आलिया भट्ट वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल और यहां शी चोज टू बी क्वाइट एट मेजर, क्योंकि भाई कुछ बोल के ट्रोल होने से अच्छा है ना कि आप चुप्पी साध के बैठे। और वहीं अगर बात करें समय रायना की, देखो यू ऑलरेडी नो दैट आई डोंट लाइक दिस पर्सन मच, ऊपर से ये जो सीजन 2 आया है इतने बवाल के बाद मुझे तो वही कॉन्ट्रोडिक्टरी लग रहा है, एंड एट द सेम टाइम जिस लेवल के ब्रांड इंटीग्रेशन हो रहे हैं भाई साहब, बेचू शो लगता है मुझे तो ये। बाकी हाँ, समय रायना जिस हिसाब से सेफ प्ले कर रहे हैं इन दिस न्यू सीजन इज एक्चुअली शोइंग अ न्यू वर्जन ऑफ हिम व्हिच हिज फैंस माइट जस्ट नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। बाकी आपका ओपिनियन क्या है अबाउट द सेम, डू लेट मी नो अबाउट इट मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na virtua la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank se bol le ho na, hamari nahi scheme aayi hai. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
1: मारूंगी ना।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी,
1: सॉरी ना मैं, सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
1: कोकड़ो को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। वेलकम टू द जंगल, वेलकम। हाँ जी, वेलकम फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म की बात कर रही हूँ, जिसको CBFC ने पास तो किया है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। सो बेसिकली मूवी में दिशा पाटनी और जैकलिन फर्नांडिस के कुछ सेंसुअल विजुअल्स थे, उसको सेंसर कर दिया गया है। एंड उसी के साथ कुछ डायलॉग्स में भी फेरबदल किए गए हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन वर्ड्स दैट वर यूज्ड प्रीवियसली। सो 26th ऑफ जून को रिलीज हो रही है फिल्म, जो 2 घंटे 44 मिनट एंड 50 सेकेंड बोले तो 164.50 मिनट्स की होने वाली है। So you better mark your calendars and take out some good long hours for the same. मैं वापस आऊंगा भाई, ये फिल्म नहीं एक तोहफा है इम्तियाज अली के डायरेक्शन का। सो ये फिल्म रिलीज हुई थी पिछले हफ्ते और उस वक्त जितना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इसका, सेकेंड वीकेंड में अलग लेवल का जंप दिखा है फॉर दिस फिल्म इन द थिएटर्स। मामला तो अब ऐसा है कि थिएटर वालों ने लोगों के डिमांड पे इस मूवी को एक्स्ट्रा शोज देने भी शुरू कर दिए हैं। सो ऑल इन ऑल देयर हैज बीन अ रेयर 115% का जंप ऑन द सेकेंड वीकेंड। So yes, it is definitely emerging as a surprise story of the season. वैसे इतना भी surprise नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि इम्तियाज अली का वो मीम याद है जो चल रहा है फिलहाल, जहां वो कह रहे हैं कि हाँ जब आती है मूवी तो आते नहीं हो देखने, बाद में मास्टरपीस करते हो। इंतहा हो गई इंतजार की, यही गाना गा रहे थे अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स के व्यूअर्स। क्योंकि एक्टर यश स्टारर, ये जो अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है, उसके रिलीज डेट को लेके काफी टू एंड फ्रो चल रहा था, बट फाइनली द एग्जैक्ट डेट इज हियर एंड इट इज 26th of August। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन एज वेल। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चा बेटी आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। एंड एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट इट्स टाइम टू फाइंड अ मिर्ची फिल्मची इन यू। यस यू हर्ड इट राइट। सो द ड्रिल ऑन अ डेली बेसिस इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजने के लिए, ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। सो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं अंकुश जी। तो मेरा पहला सवाल है, कटरीना कैफ की कॉमेडी फिल्म जिसमें वो एक वॉनबी एक्ट्रेस बनी है,
3: तीसमार खान।
0: बहुत ही बढ़िया। तीसमार खान के मेल लीड कौन है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जूही चावला के साथ जिसमें दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है,
3: आलू है ना?
0: हाँ हाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू।
3: आलू मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
0: बहुत बढ़िया। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में जूही चावला के पापा कौन है?
3: कादर खान
0: की फिल्म जिसमें उनका होटल का बिजनेस होता है,
3: दूल्हे राजा।
0: बहुत बढ़िया। दूल्हे राजा में फाइव स्टार महाराजा इंटरनेशनल के सामने अपना ढाबा कौन खोलता है?
3: गोविंदा।
0: गोविंदा की फिल्म जिसमें वो हीरोइन की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए नौकर बनते हैं,
3: हीरो नंबर वन।
0: बहुत बढ़िया। हीरो नंबर वन की फीमेल लीड का नाम?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर का निकनेम लोलो है, बेबो किसका निकनेम है?
3: करीना कपूर का।
0: क्या बात है। करीना कपूर की फिल्म जिसमें रोबोट्स हैं?
3: रोबोट्स हैं, शाहरुख खान के साथ है।
0: हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। रावण के मेल लीड कौन है?
3: शाहरुख खान
0: की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं।
3: थेरेपिस्ट बने हैं?
0: हाँ जी।
3: ये
0: चलिए कोई बात नहीं, बट इस गेम को जहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी मैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं, अगर आपको इसका जवाब पता है तो यू नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके डीएम्स में अपना नंबर भेजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: only on Radio Mirchi. It's hot.
1: Yeah. Meaty Mirchi.
2: Brighten up your day, we will find a way.
1: On Meaty Mirchi. Aha.
3: खेलो मगर प्यार से
4: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ जिसके जरिए मैं आपके अंदर के मिर्ची फिल्मची को ढूंढती हूँ। सो आज इस गेम की शुरुआत की हमारे साथ अंकुश जी ने। अब इसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ है आयुष।
5: हेलो आयुष, कैसे हैं आप?
6: मैं बढ़िया, आप सुनाओ?
5: बिल्कुल बढ़िया। आप जरा और बढ़िया कर दीजिए ताकि मैं अपना गेम आगे कंटिन्यू कर पाऊँ यार।
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो जिस पॉइंट पे अंकुश जी अटके थे, इट वाज शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं,
6: डियर जिंदगी।
5: डियर जिंदगी में शाहरुख खान के पास थेरेपी लेने कौन जाता है?
6: आलिया भट्ट।
5: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप दोएंगे ना इसको,
6: गली बॉय। गली बॉय।
5: गली बॉय के मेल लीड कौन है?
6: रणवीर सिंह।
5: रणवीर सिंह की फिल्म जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर है,
6: सिम्बा।
5: वाह, सिम्बा की गर्लफ्रेंड इन द मूवी,
6: सारा अली खान।
5: सारा अली खान की डेब्यू फिल्म,
6: ओह केदारनाथ।
5: केदारनाथ के मेल लीड का नाम?
6: सुशांत सिंह राजपूत।
5: सुशांत सिंह राजपूत ने कौन सी बायोपिक की है?
6: एम एस धोनी
5: में साक्षी धोनी का रोल किसने प्ले किया है?
6: कियारा आडवाणी।
5: क्या बात है, यहाँ लोग गड़बड़ाते हैं, दिशा बोल देते हैं। कियारा आडवाणी ने कौन सी हॉरर कॉमेडी में काम किया है?
6: भूल भुलैया। भूल भुलैया टू।
5: भूल भुलैया टू में रूह बाबा कौन है?
6: कार्तिक आर्यन।
5: कार्तिक आर्यन की फिल्म विद भूमि पेडनेकर,
6: पति पत्नी और वो।
5: पति पत्नी और वो में कार्तिक का अफेयर किससे है?
6: अनन्या पांडे।
5: अनन्या पांडे की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म
6: तान मेरा दिल।
3: क्या बात है, तो इसी के साथ हमें मिल गया आज का हमारा दूसरा
0: मिर्ची फिल्मची।
3: तो अगर आपको ये गेम पसंद है और आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मिर्ची श्रुति के डीएम्स में अपना नंबर डाल दीजिए, आपको कॉल जरूर आएगा। हाँ, थोड़ा लेट भले ही हो सकता है बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स दैट आई गेट, बट यू नो इंतजार का फल मिर्ची फिल्मची होता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Whipple, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम
2: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस हैं उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आपने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा है मतलब
2: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: आपको से फोन मत करियो मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: इट्स हॉट

0: Vai, ora vai, ora vai. Hit Gunny.
1: Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: यार आइटम सॉन्ग हमेशा गंदे नहीं होते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ ये बात और है कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बवाल आइटम सॉन्ग्स हैं। आई मीन जिनको देख के बवाल भी हो गया था। बट आज पांच के पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसे ग्रेसफुल येट हॉट आइटम सॉन्ग्स की डिस्कशन कर रही हूँ कि आप भी बोलेंगे वाह श्रुति क्या लिस्ट निकाल के लाई है। खैर इस लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग कजरा रे। अब चलिए नंबर दो पे बात करते हैं अबाउट दिस सॉन्ग। भाई आज भी सुनिधि चौहान अपने कॉन्सर्ट्स में जब ये गाना गाती है तो जनता पागल हो जाती है। एंड इमेजिन 2006 में ये फिल्म आई थी, स्टिल दिस सॉन्ग इज सो रेलिवेंट। बाकी धूम 2 का ये गाना है, प्रीतम दा का म्यूजिक है, सुनिधि चौहान लाइक आई सेड उनकी आवाज है एंड समीर के लिरिक्स हैं। बाकी इस मूवी में ऐश्वर्या राय है और वो किस तरीके से ऋतिक रोशन को खा गई है। आई मीन नॉट लिटरली एज इन एक्टिंग एंड स्क्रीन प्रेजेंस वाइज। खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे फेवरेट गाने के बारे में। मतलब रेखा भारद्वाज को ये गाना लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं सुना तो क्या सुना भाई। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने मिर्ची ज्वाइन किया था ना, देन रेखा भारद्वाज का कॉन्सर्ट वॉज द फर्स्ट कॉन्सर्ट ऑफ विच आई वॉज अ पार्ट। गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे फिलहाल। सो दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी ओमकारा जिसमें विशाल भारद्वाज का म्यूजिक है, उनकी धर्मपत्नी रेखा भारद्वाज के साथ साथ राकेश पंडित जी की आवाज है और लिरिक्स हैं द वेरी अमेजिंग गुलजार साहब के। खैर अगर मेरी इस लिस्ट की चर्चा सुनते सुनते आपको भी कोई गाना याद आ रहा है तो मुझे बताओ ना MIRCHISHRUTI दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: हर आइटम सॉन्ग अश्लील नहीं होता लक्ष्मण।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मुझे तो लगता है एक दिन मेरी ये घटिया मिमिक्री ना मेरी नौकरी खा जाएगी। वैसे हाँ आई अग्री दैट हर आइटम सॉन्ग अश्लील नहीं होता है, इट्स नॉट वल्गर ऑलवेज। हाँ ठीक है, बहुत सारे ऐसे आइटम सॉन्ग्स हैं जो आपको थोड़े से अनकंफर्टेबल कर देते हैं, बट आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ग्रेसफुल येट हॉट सॉन्ग्स की बात कर रही हूँ कि आप भी बोलेंगे वाह श्रुति वाह, दिल जीत लिया यार। तो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग कचरा रे, नंबर दो पे हमने बात की क्रेजी किया रे के बारे में, नंबर तीन नमक इश्क का, और अब है नंबर चार की बारी जिस पे पड़ेगा ये गाना भारी। भाई एक तो ये मूवी ओहो तेजाब फिल्म का ये गाना था भाई दवे, हाँ जिसमें ये गाना माधुरी दीक्षित के ऊपर पिक्चराइज है, और क्या ही कुर्ता फाड़ गाना है भाई साहब, आज भी ये गाना कोई भी सुन के अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाता है। बाकी गाने में जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, तो सब कुछ परफेक्ट होगा तो कमाल ही होगा ना यार। चलिए जी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नंबर पांच पे इस सुपर डुपर लव्ड सॉन्ग की, हवा हवाई। एक तो श्रीदेवी मैम, उनके नखरे, उनकी अदाएं, उनका हर कुछ सो परफेक्ट। सो 1987 में ये मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, जिसमें ये गाना लिखा है जावेद अख्तर ने, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। अब बताइए क्या हर आइटम सॉन्ग अश्लील वल्गर ऐसा सा होता है क्या? खैर अगर मेरी इस लिस्ट में अपना कोई फेवरेट आइटम सॉन्ग ऐड करना चाहो तो मुझसे कनेक्ट करो ना MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। वेलकम टू द जंगल, वेलकम। हाँ जी, वेलकम फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म की बात कर रही हूँ, जिसको CBFC ने पास तो किया है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। सो बेसिकली मूवी में दिशा पाटनी और जैकलिन फर्नांडिस के कुछ सेंसुअल विजुअल्स थे, उसको सेंसर कर दिया गया है। एंड उसी के साथ कुछ डायलॉग्स में भी फेरबदल किए गए हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन वर्ड्स दैट वर यूज्ड प्रीवियसली। सो 26th ऑफ जून को रिलीज हो रही है फिल्म, जो 2 घंटे 44 मिनट एंड 50 सेकेंड बोले तो 164.50 मिनट्स की होने वाली है। So you better mark your calendars and take out some good long hours for the same. मैं वापस आऊंगा भाई, ये फिल्म नहीं, एक तोहफा है इम्तियाज अली के डायरेक्शन का। सो ये फिल्म रिलीज हुई थी पिछले हफ्ते और उस वक्त जितना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इसका, सेकेंड वीकेंड में अलग लेवल का जंप दिखा है फॉर दिस फिल्म इन द थिएटर्स। मामला तो अब ऐसा है कि थिएटर वालों ने लोगों के डिमांड पे इस मूवी को एक्स्ट्रा शोज देने भी शुरू कर दिए हैं। सो ऑल इन ऑल देयर हैज बीन अ रेयर 115% का जंप ऑन द सेकेंड वीकेंड। So yes, it is definitely emerging as a surprise story of the season. वैसे इतना भी सरप्राइज नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि इम्तियाज अली का वो मीम याद है जो चल रहा है फिलहाल, जहां वो कह रहे हैं कि हाँ जब आती है मूवी तो आते नहीं हो देखने, बाद में मास्टरपीस करते हो। इंतहा हो गई इंतजार की, यही गाना गा रहे थे अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स के व्यूअर्स। क्योंकि एक्टर यश तारर, ये जो अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है, उसके रिलीज डेट को लेके काफी टू एंड फ्रो चल रहा था, बट फाइनली द एग्जैक्ट डेट इज हियर एंड इट इज 26th of August। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन इज वेल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका ट्यूसडे की शाम में। वैसे दोस्तों, ट्यूसडे को ना हम वीक का अंडरडॉग भी कह सकते हैं, पर मजे की बात यह है कि दुनिया के कई कंट्रीज में ट्यूसडे इज एक्चुअली कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोडक्टिव डे ऑफ द वीक। मतलब आज का दिन सिर्फ काम के लिए ही नहीं, कामयाबी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और जब प्रोडक्टिविटी का प्रेशर हो तो एक शानदार शाम और भी ज़रूरी हो जाती है, और बस वही लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो ये शाम फुल है बॉलीवुड बीट्स, फिल्मी फील्स और आपके फेवरेट डेडिकेशंस के साथ। तो चलिए बनाते हैं इस ट्यूसडे को ट्रेंडिंग विद द नेक्स्ट सॉन्ग ओनली फॉर यू राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wird bala burga. Milchi, burga.
2: Hallo.
3: Hello, madam, good evening.
2: Hi.
3: Bank je bolle ho na, hamari nahi scheme hai ye. Madam, taaji scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: सॉरी नवीन, सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवीन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

स्पोर्ट्स फैन की ना एक बात बहुत ही अच्छी होती है, सबको कमबैक देखने में बहुत मजा आता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और अब जबकि फीफा फीवर छा चुका है, तो हर फैन की नज़र ना सिर्फ गोल्स पर नहीं है। कभी कोई टीम पहली मैच हारने के बाद किस तरह से एकदम ज़बरदस्त वापसी करती है, ये भी उतना ही मज़ा देता है। या कभी कोई प्लेयर इतना प्रेशर होने के बाद भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देता है, ये भी उतना ही ज़रूरी होता है। और जब ऐसा होता है ना, तो स्टेडियम से लेकर लिविंग रूम तक सब एक ही बात बोलते हैं कि ये हुई ना बात। क्योंकि ये जो कमबैक स्टोरीज है ना, ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, इमोशंस में भी जी जाती है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई चीज़ दोबारा से फेलियर के बाद भी स्पॉटलाइट में आए, या फिर जब किसी पुरानी फेवरेट टीम को एक नया चांस मिले। और शायद इसीलिए ज़िंदगी में भी ना कभी कभी हम उन चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखते हैं जो काफ़ी टाइम तक हमने साइड पर रखी है। और शायद इसी थॉट के साथ तनिष्क लाया है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, यानी आपकी वो ओल्ड ज्वेलरी का भी कमबैक एक नए अवतार में। तनिष्क नाउ टेक्स ओल्ड गोल्ड अबाउट 9 कैरेट फ्रॉम एनी ज्वेलर फॉर फुल वैल्यू एंड विद 0 deductions. ऑल्सो यू कैन गेट एडिशनल $5 per gram on exchange gold with diamond purchases. Terms and condition apply. तो आज ही विजिट कीजिए तनिष्क न्यू जर्सी एट 1429 ओक्ट्री रोड इजलिन एंड गिव योर ओल्ड ज्वेलरी अ फ्रेश कमबैक विद न्यू डिजाइंस। और फीफा देखते वक्त आपको किस टीम की कमबैक स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
0: Radio Mirchi, New York. It's hot.

दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड भी ना न्यू जर्सी टर्न पाइक हो चुका है, क्योंकि सबको एक ही वक्त पे निकलना होता है। जी हाँ, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 बॉलीवुड का सबसे क्राउडेड मंथ्स में से एक माना गया है, जहाँ मल्टीपल मेजर रिलीजेस एक ही महीने में स्क्रीन्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी रिलीजेज एक साथ आने वाली है कि स्क्रीन शेयरिंग और ऑडियंस अटेंशन दोनों के लिए कंपटीशन बढ़ती ही जाने वाली है। और अगर लिस्ट भी देखें ना तो मज़ा आ जाता है, मतलब मूवीज लाइक मैं वापस आऊँगा, कॉकटेल 2 और कहीं और बड़े बड़े टाइटल्स लाइन में खड़े हैं। और मुझे लगता है कि यार इसमें ना ऑडियंस का ही फायदा है। अब आप बोलोगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मतलब एक ज़माना था हम कहते थे कि यार कोई अच्छी मूवी ही नहीं बन रही है, तो अब प्रॉब्लम उल्टी हो चुकी है, क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं आ चुकी है कि हम ये कहने वाले हैं कि पहली कौन सी मूवी देखे। तो आप भी जरूर बताना कि यार जून में आप अगर एक ही मूवी देख पाओ बॉलीवुड की थिएटर में जाकर, तो वो कौन सी मूवी होगी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, ये करते हैं यार थोड़े बहुत वॉचलिस्ट कंपेयर। और तब तक के लिए आपके लिए ये मजेदार सन्नई रिलीज वाली मूवी का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सुनते ही लगता है कि ये तो ट्रेंड फॉलो करने नहीं आए हैं, ये अपना एक एहसास छोड़ने आए हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और कुछ ऐसा ही फील आता है एक दीवाने की दीवानियत टाइटल ट्रैक सुनते वक्त। क्योंकि आजकल हम गाने बहुत ही जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, रील देखी, हुक सुना, फिर नेक्स्ट स्वाइप कर लिया, लेकिन ये गाना ना उस रेस का हिस्सा नहीं लगता। ये आपको थोड़ा सा रुकने के लिए कहता है। गाने की मेलोडी धीरे धीरे खुलती है और कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, म्यूजिक और वोकल्स दोनों सांस लेने की जगह देती है, और शायद इसीलिए गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस होता है। और फिर आती है विशाल मिश्रा की आवाज़। यार, उनकी आवाज़ की ना सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि उनमें परफेक्शन से ज़्यादा इमोशन सुनाई देता है, और ऐसा लगता है कि वो गाना गा नहीं रहे हैं, वो उस एहसास को एक्चुअल में जी रहे हैं। हर लाइन में एक सिंसियरिटी होती है, एक रॉनेस होती है जो सीधा दिल तक पहुंचती है, और मुझे लगता है शायद इसीलिए विशाल मिश्रा के गाने आज के म्यूज़िक लैंडस्केप में एकदम अलग नज़र आते हैं। क्योंकि जब बहुत सारे ट्रैक्स बीट और ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तब उनके गाने मेलेडी और इमोशन को सेंटर स्टेज बना देते हैं, और शायद यही खास बात है इस गाने की भी। तो गाना ख़त्म होने के बाद लिरिक्स या हुक से भी ज़्यादा ना उसका मूड साथ रह जाता है, और शायद इसी वजह से ये गाने सच्ची में जीत जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये गाना सुना है तो ज़रूर बताना कि किस चीज़ ने आपको ज़्यादा होल्ड किया है, मेलेडी, लिरिक्स या विशाल मिश्रा की वो दिल से निकली हुई आवाज़। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और सुनते हैं दीवानियत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: श्याम शानदार लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम मिर्ची

चीजों के लिए ना लॉजिक चाहिए होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए सिर्फ पागलपन। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चाहे किसी के लिए रात भर जगना हो, एक गाने को 100 बार रिपीट पे सुनना हो, कॉन्सर्ट के लिए मीलों ट्रैवल करना हो, या फिर हजारों लोगों के बीच खड़े होकर पूरी आवाज से लिरिक्स गाना हो, यार इन सब के लिए ना लॉजिक नहीं पागलपन तो होना चाहिए। और इसी एहसास को सेलिब्रेट करने आ रहे हैं विशाल मिश्रा अपने पागलपन टूर 2026 के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं, उन लोगों का सेलिब्रेशन है जो दिल की बात दिल से करते हैं, जो म्यूजिक को सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज नहीं अपनी कहानी का हिस्सा मानते हैं। एंड इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। तो आप तो जानते ही हो कि कैनवस हमेशा ग्रैंड होता है, एक्सपीरियंस मेमोरेबल होता है, और शाम हमेशा एक्सपेक्टेशन से बड़ी होती है। तो तैयार हो जाइए न्यू जर्सी एक ऐसी म्यूजिकल नाइट के लिए जहां सुर भी होंगे, जज्बात भी होंगे, और थोड़ा सा वो खूबसूरत सा पागलपन भी होगा जो जिंदगी को यादगार बना देता है। विशाल मिश्रा लाइव इन कॉन्सर्ट पागलपन टूर 2026 आ रहा है शुक्रवार को June 26th 8 PM ऑनवर्ड्स एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ हार्ड रॉक लाइव ईटिस एरिना अटलांटिक सिटी। तो जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusainc.com, क्योंकि चंद ही दिन बचे हैं, तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए। और दोस्तों मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बस बताना है कि पागलपन भरा कैसे हुआ, ये जो गाना है विशाल मिश्रा का ये कौन से मूवी का है। टेल मी ऑन इंस्टाट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो @9033647244 और अपना नाम अपना नंबर ईमेल आईडी भेजना, क्योंकि जल्द ही विनर्स डिक्लेयर होने वाले हैं फॉर फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। तो जल्दी से अपने जवाब भेजिए कि कैसे हुआ, ये गाना कौन से मूवी का है, और तैयार हो जाइए एक ऐसी शाम के लिए जिसमें पागलपन सिर्फ देखा नहीं जाएगा महसूस भी होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nerdy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na vida, fala, murga. Nerdy, murga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार, जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है? तेरा
4: दिमाग खराब हो रहा है,
2: बदतमीजी मत कर।
4: तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि ये लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, सीक्वल्स तब बनते हैं जब ओरिजिनल की यादें ना लोगों के दिल से जाती नहीं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो कॉकटेल को रिलीज हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी उसके गाने जब भी बजते हैं ना, लोग एकदम से उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और अब कॉकटेल 2 की रिलीज के साथ वही फीलिंग फिर से आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकटेल 2 ना बिल्कुल भी पहली कॉकटेल जैसी नहीं है। मतलब दुनिया वही है, इमोशन वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल नया है, कहानी नई है, अंदाज नया है, एकदम नए अवतार में। और शायद जिंदगी में भी ना हम सबको यही बात पसंद है, पुरानी चीजें लेकिन नए अवतार में। क्यों, जब कोई पुरानी पसंदीदा चीज एक नए रूप में वापस आ जाती है ना, तो उसका नया अवतार, नया वर्जन देखने में ना वही मजा आता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग आजकल अपनी पुरानी चीजों को भी ना एक नए अवतार में देखना पसंद कर रहे हैं। और इसी थॉट के साथ तनिष्क भी लाया है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, यानी आप अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी विच इज़ अबाउट 9 कैरेट बॉट फ्रॉम एनी ज्वेलर्स लेकर जा सकते हो तनिष्क के पास फॉर फुल वैल्यू एंड विद 0 डिडक्शंस। एंड यू विल ऑल्सो गेट एन एडिशनल $5 per gram ऑन एक्सचेंज गोल्ड विद डायमंड परचेजेस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो आज ही विजिट कीजिए तनिष्क न्यू जर्सी एट 1429 ओक ट्री रोड इजुलिन, और अपने ओल्ड ज्वेलरी को दीजिए एक नया अवतार। और अब देखते हैं कॉकटेल 2 अपने म्यूजिक के साथ कितनी नई यादें बनाता है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट कॉकटेल 2 सॉन्ग, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा फेवरेट गाना बजाते हैं अभी राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग स्पेशल।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। वैसे इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली, इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है। इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है, थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नज़रों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते हैं, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की ज़रूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज़ दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और बजाते हैं वो गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए मस्करा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rambala. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से कम
3: बिल्कुल से बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहां रहा है
3: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आपने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: है
2: मतलब
3: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब नहीं होते, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए, मॉर्निंग कम्यूट की जगह एक काम, कप ऑफ चाय, और एक ऐसा काम वो भी ऐसे फील्ड में जहाँ ग्रोथ भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और आजकल लोग करियर चूज करते वक्त ना सिर्फ सैलरी ही नहीं देखते, वर्क लाइफ बैलेंस भी देख रहे हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे करियर ऑप्शंस पॉसिबल है, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो आज ही कंसिडर कीजिए अ करियर एज अ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट विथ एम्स एजुकेशन, बिकॉज विथ जस्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग यू कैन गेट स्टार्टेड इन दिस एवर ग्रोइंग फील्ड। प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन अवेलेबल है और अभी वो लोग आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। For more guidance, call 908-222-0002, 908-222-0002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu for a long-lasting career of medical billing and coding specialist, जहां घर का सुकून भी है और काम करने का मजा भी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, it's hot!

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

दोस्तों, हम सब ने टाइटन की घड़ी देखी है, लेकिन कभी सोचा है कि एक इंडियन वॉच ब्रांड दुनिया के मैप पर कैसे पहुंची? श्याम चंदा लाइक सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जून ओटीटी पर एक सीरीज बहुत ही क्वाइटली बस क्रिएट कर रही है। जी हाँ, मेड इन इंडिया, अ टाइटन स्टोरी। सीरीज में नसीरुद्दीन शाह रिपोर्टली JRD टाटा का रोल निभा रहे हैं और जिम शार्व माई फेवरेट जर्सिक देसाई का रोल में नजर आ रहे हैं। कहानी बस एक कंपनी की नहीं है, बल्कि उस विजन की है जिसने इंडियन कंज्यूमर ब्रांड को ग्लोबल कॉन्फिडेंस दिया है। और मुझे तो लगता है कि ये स्पेशली ना हम जैसे NRI ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करेगी, क्योंकि जब भी हम कहीं भी मेड इन इंडिया को प्राउडली देखते हैं ना, उसके पीछे का सपना और उसके पीछे की रिस्क जब जानने मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ये सीरीज बिजनेस स्टोरी कम और एम्बिशन स्टोरी ज़्यादा लगती है, तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपने भी ये सीरीज देखी है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर देखिए तो आपको कैसी लगी? और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कुछ लव सॉन्ग सुनते ही लगता है कि ये गाना लिखा नहीं गया है, किसी ने ना बस दिल की बात रिकॉर्ड कर दी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और न्यू जर्सी के शाम में अगर कोई गाना प्यार की सिंप्लिसिटी को कैप्चर करता है ना, तो वो है कैसे हुआ फ्रॉम द एल्बम कबीर सिंह। और यार, कैसे हुआ सुनते वक्त ना मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसके जो कंपोजर है विशाल मिश्रा, उनको शायद द ग्रैंड रोमांस से ज़्यादा छोटी छोटी फीलिंग्स पसंद आती होंगी, क्योंकि इस गाने में ना ज़्यादा ड्रामेटिक डिक्लेरेशंस हैं, ना ओवर द टॉप अरेंजमेंट्स हैं, बस एक सिंपल मेलोडी है जो यार सीधा दिल तक पहुंचती है। क्योंकि विशाल मिश्रा ने इस गाने को कंपोज भी किया है, लिखा भी है और खुद गाया भी है, और शायद इसीलिए ये गाना इतना ऑर्गेनिक लगता है। जैसे कबीर सिंह के इंटेंस वर्ल्ड में ये ट्रैक ना एक सॉफ्ट सी हार्टबीट की तरह काम करता है। और कभी कभी ना सिंप्लिसिटी सबसे मुश्किल चीज़ होती है, और ये वो गाना है जो उसका एब्सोल्यूट प्रूफ है। क्योंकि यार, विशाल मिश्रा की मेलोडीज़ में ना एक खास बात ज़रूर होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। पहली बार सुनो तो लगता है कि जैसे गाना ना पहले से ही दिल में था, और शायद इसीलिए कैसे हुआ आज भी लोग गाते हैं, चाहे उन्हें गाना सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन दिल से गुनगुनाते ज़रूर है। तो दोस्तों, आप भी बताना कि आपकी लाइफ का वो कैसे हुआ मोमेंट क्या था जब प्यार ने बिना नॉक किए एंट्री मार दी थी, और क्या तब ये गाना बैकग्राउंड में चला था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं विशाल मिश्रा की कंपोजिशन कैसे हुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो तो, जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiyusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है कि विशाल मिश्रा का कंपोज्ड गाना कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ कौन से मूवी का है। डीएम मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो @9033647244 टू विन फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। एंड रिमेंबर माई फ्रेंड्स, इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC प्रेजेंटेशन, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉक बस्टर इवनिंग विद विशाल मिश्रा पागलपन टूर। एक शाम जहाँ गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे
4: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
4: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: यार बदतमीजी, बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है एक लेजेंडरी बारिश वाले गाने से। जी हाँ दोस्तों, जब भी बारिश की बात होती है ना तब एक गाना दिमाग में जरूर आता है, टिप टिप बरसा पानी। वैसे तो यार स्क्रीन पे देखो ना तो फुल ऑन रोमांटिक लगता है, एकदम फुल रोमांस इन द रेन, लेकिन पर्दे के पीछे रवीना टंडन जी ने बताया कि शूट कितनी ज्यादा टफ थी, मतलब रेन मशीन्स के साथ स्लिपरी फ्लोर और वो सारी और मल्टीपल रीटेक्स। वैसे तो यार डांस ग्लैमरस तो लगता है, स्पेशली रवीना जी इन द येलो साड़ी, पर सेट पर सबको बैलेंस मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो समझे दोस्तों, मतलब बॉलीवुड में ना यार रेन सॉन्ग रोमांटिक तो लगता है लेकिन पर्दे के पीछे सबकी बैंड बजती है। वैसे क्या आपने कभी इस गाने पे रेन में डांस करने की कोशिश की है? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफ़ी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: हमारी तीसरी डेट है तो क्या हुआ? Why don't you come home with me? Spend some time together. You will be absolutely safe. इसी बहाने से you will get to know me better as well. अभी इतना amazing sales pitch था कि कोई ना कैसे कह सकता था. So this was technically my third date with this guy I met on a dating app. वो मुझे अपने घर लेकर गया and his house was gorgeous. ठीक है, candles वैंडल्स लगी हुई हैं जगह जगह. उसने candles light की, low lying lamps on किए. The mood, the vibe was perfect. And then he said, If you really want to know me, Roshi, then hume ek cheez karni chahiye. And I was like, okay, this sounds cute. Ye kya naughty cheez suggest karne wala hai? And then he played a podcast. That is right. Usne ek podcast chalaya, as in anti-climax. Aur wo podcast itna ghor boring. It was like some CEO of some company. और वो लोग कोई प्रोटीन पाउडर वाउडर बनाते थे एंड ही सेड कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि मैं ये बेच सकूं और आज देखिए मेरा प्रोटीन पाउडर कितना सक्सेसफुल है एंड आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू कॉल अ कैब एंड गो होम क्योंकि इससे अच्छा है कि मैं घर जाकर अपनी दीवार पर 480 बार अपना सर पीटूं दैट विल बी मोर एंटरटेनिंग देन दिस स्टूपिड लिटिल पॉडकास्ट अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरी डेट तो गंदी हो गई बट द ओनली वे
3: हेलो
4: मैडम गुड इवनिंग
3: हाय
4: बैंक से बोल रहे हो ना हमारी नई स्कीम आई है मैडम ताजी स्कीम है बढ़िया स्कीम है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
3: सब्जी बेच रहे हैं या लोन के
4: पहले सब पहले सब्जी बेचता था
3: अगर अगली बार फोन आ गए ना
4: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो
3: हेलो
4: मैडम अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे
5: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए अपने ऊपर पड़ जाती है यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आपका मुर्गा बन गया
4: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है
5: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं
3: नहीं
5: से सॉरी
3: सॉरी नवे
5: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
3: कुकड़ो
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट